दुख दारू सुख रोग भया, जा सुख ताम ना होई। तू करता करना मैं नाही, जा हूं करी ना होई। बलहारी कुदरत वसया, तेरा अंत ना जाई लखया। रहाऊ

नाली गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साध बिचारे गावन तुदनो जति सती।

संभाले। गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरग माश पयाले। गावन तुदनो रतन उपाए तेरे आठ साठ तीरथ नाले। गावन तुदनो जोद महाबल सूरा गावन तुदनो खाणी चारे।

घट घट के पट पट की जाने, जब उद करख करा कर तारा, प्रजा धरत तब दे अपारा, जब अकरख

मूढ़ काश भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तोहे ते।

जिन वसिया मन माही। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानियो साहिब सतगुरु गुरु ग्रीब नवाज, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब, कृपालु सतगुरु जी की पावन पवित्र हदूद अंदर शामा दे दीवान विच जुड़ बैठी गुरु रूप साध संगत जी आप वडभागी हो, जो श्रद्धा भावना सहित हो करके गुरु चरणा दियां हाजरियां भर रहे हो। बड़े ही प्यार दे नाल गुरु सवारियां पासों भाई रिशपाल सिंह जी अते उन्हां दे जत्थे पासों अमृत बाणी दा कीर्तन आप जी ने सरवण कीता है। समा होया अमृत बाणी दी कथा दा, पावन पवित्र लड़ीवार 22 वारां दी कथा विच आपां मलार की वार जो गुरु कृपा सदका विचार प्रारंभ कीती है, उस वार विचों अज नौवीं पौड़ी दे ये दो श्लोक आप जी ने सरवण कीते हन। पौड़ी कल दे दीवाना विच करांगे। दो श्लोक जो आप जी ने पाठ सरवण कीता है, तीसरे गुरुदेव गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दी रचना तो उच्चारण कीते गए ये श्लोक हन। इन श्लोकां दा भाव गुरु साहब जी ने जो दर्शाया है कि ए जीवात्मा रूपी जेड़ा बबीहा है, चात्रिक है, पंछी है, सारंग है, ये प्यासा है परमात्मा परमेश्वर दे नाम रूपी स्वांति बूंद तो हीणा है, इस करके पुकारदा है, इस करके भटकदा है, इस करके तड़फदा है। सब कुछ हुंदियां भी इस दे अंदर दी ओ तिख नहीं जा रही, प्यास नहीं मिट रही, तां गुरु साहिब सच्चे पातशाह जी उस जिग्यासु उस भटकदे होए उस बबीहे रूप जीव नूं समझा रहे ने कि ऐ बबीहा, पहली गल कि तेरा भटकना, तेरा तरसना, तेरा दुखी होना ये वाजब नहीं, क्योंकि जदों दी कृपा होएगी उदों आप वरस जाएगा, उदों तेनू आप अपने नाम दी बूंद दे के शरशार कर देगा, तृप्त कर देगा। दूसरे श्लोक विच गुरुदेव जी ये कृपा करदे ने कि हे भाई, जे तू थोड़ी जी समझ कर ले, थोड़ा जा सियाणा बन जाए तो तेनू पता लग जाए भी तू है ही उहदे विच है, तेरा वासा ही उस पानी विच है, उहदे विच ही तू रह रहा है, फिर प्यासा क्यों है, फिर तड़फ क्यों रहा है, फिर इन्ना दर्द दुख क्यों सह रहा है, इन्नी भटकना क्यों सह रहा है। तो गुरु साहब कहिंदे उहदा कारण यह है कि तेनू जिस जल विच तेरा वास है, जिस ब्रह्म सत्ता विच तेरी चेतना रूपी तू ऐ बबीहे रह रहा है, तेनू उहदी सोझी नहीं, समझ नहीं, ज्ञान नहीं, बस इस करके तू प्यास विच अपने जीवन नू तड़फा रहा है। है तू उहदा रूप ही उहदे विच ही है, पर अपनी अज्ञानता करके भिन्नता है, ते उस नू पुकार रहा, मंग रहा। दूसरा तेरा विलकना, तेरा इस तरह पुकारना, वो मालक परमात्मा परमेश्वर ने आप कृपा करनी है, तू दे हुक्म विच रहना सिख लै, क्योंकि जिज्ञासु हुक्म विच रहिंदा है। ये दो श्लोकों विच गुरु साहब जी ने कृपा की है। पहले श्लोक विच कि उहदे हुक्म विच जदों तू सबर विच रहेगा, उड़ीक विच रहेगा, वो तेरे ते कृपा दी रहमत दे बारिश करेगा। दूसरे विच ये क्या भी ज्ञान हो जाए, सोझी हो जाए, तो पता लग जाता भी मैं तो ऐसे विलक रहा सड़फ रहा सा, मेरा तो वासा ही उहदे विच है, मैं तो है ही उहदा रूप हाँ, ये ज्ञान होने तो बाद पता लगता। ये दो श्लोकों विच गुरु साहब सच्चे पातशाह जी की कृपा करते ने पूर्ण तौर ते गुरबाणी दे संदर्भ विच रह के, गुरबाणी दे होर शब्दां नू अपना विचार दे आधार बना करके अपना
ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਆਖੋ ਜੀ।

महाराज दे चरणा कमलों में बड़े प्रेम नाल हाजरियां भर रहे हो, शीश झुकाओ, प्यार नाल आखो सारे सतनाम श्री वाहिगुरू। स्पैशल तौर पर गुरु घर के कीर्तनीए भाई साहब जी, भाई रछपाल सिंह जी, तिना का परिवार, भाई शिवचरण सिंह जी, कमलजीत सिंह जी, साडे अपने नगर के बचपन के साथी, उन्हां वल्लों हुकम है पावन शब्द का प्रेम करते ने। भाई रछपाल सिंह जी, भाई शिवचरण सिंह जी, कमलजीत सिंह जी दसने वालों उन्हां नूं जी आया नूं। सो उन्होंने शब्द की यह सानू हुक्म लगाया है। आओ बड़े प्यार नाल महाराज दी असीस।

हर हर प्रभु कृपा तारी। संत हो सुखो वा सब थाई, पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर, प्रभ रहा सबनी जाई रहो।

जी की फतेह। धन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जियां दी पावन हजूरी दे विच अमृत वेले हाजरियां भर रही गुरु प्यारी गुरु खालसा साध संगत जी, आप जी सारे ही धनता दे योग हो। सतगुरु जी रहमत करन आप सभना जियां दियां हाजरियां दर प्रवान करन, दर कर तो सिखी सिद्धक भरोसा नाम दियां दातां तंदुरुस्ती दियां दातां सतगुरु बख्शण, इसे तरह अपने पावन चरण कमलों के नाल जोड़ के रख लैन। अज सतगुरु जी ने पावन तख्तों ते प्रकाशमान हो करके जो हुक्मनामे की दात आपां नूं बख्शिश की है, राग तना जैत सरी दे विच पंजवें पातशाह धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जिया की पावन रसना तो उच्चारण किया होया ये पावन शब्द, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जिया के पावन अंग 703 और 704 दे उत्ते सुभायमान है जी। सतगुरु जी रहमत करन इन्हां पावन हुक्मां अनुसार जीवन जाच बख्शिश करन ता जो लोक सुखी परलोक भी सुहेला हो जावे। सतगुरु जी कृपा करन हुण समां होया है, सब तो पहलां संपूर्ण श्री सुखमणी साहिब जी दे पाठ होणगे, उस तो उपरंत नितनेम दीआं पंजां बाणीआं दे पाठ होणगे। गुरु महाराज कृपा करन शुद्ध बाणी एकाग्रता सहित पढ़न अते सुनन दी ताकत बख्शिश करन। वाहिगुरु जी का खालसा

सब कीरेन, साधकै संग मनोहर बैन, साधकै संग न कतहु तहवै, साध संग आस थेत मन पावै, साधकै संग माया ते भिन्न, साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न, साध संग दुश्मन सब मीत, साधु कै संग महापुनीत, साध संग किस्यो नहीं बैर, साध कै संग ना बीगा पैर, साध कै संग नाही को मंदा, साध संग जाने परमानंदा, साध कै संग नाही हो ताप, साध कै संग तजै सब आप, आपे जाने साध बड़ाई, नानक साध प्रभु बने आई, साध कै संग न कबहू तहवै, साध कै संग सदा सुख पावै, साध संग बस्त अगोचर लहै, साधु कै संग अजर सोहै, साध कै संग बसै थान ऊचै, साधु कै संग महल पहुँचै, साध कै संग दृढ़ै सब धर्म, साध कै संग केवल पार ब्रह्म, साध कै संग पाए नाम निधान, नानक साधु कै कुरबान, साध कै संग सब कुल उधारै, साध संग साजन मीत कुटुंब ने सुतारै, साधु कै संग सो धन पावै, जिस धन ते सबको वरसावै, साध संग धर्म राय करे सेवा, साध कै संग शोभा सुर देवा, साधु कै संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन, साध कै संग सर्वथान गम, नानक साध कै संग सफल जनम, साध कै संग नहीं कछु काल, दर्शन भेटत होत निहाल, साध कै संग कलुकत हरै, साध कै संग नरक पर हरै, साध कै संग ईहां ऊहां सोहेला, साध संग बिशरत हर मेला, जो इच्छा है सोई फल पावै, साध कै संग ना बिरथा जावै, पार ब्रह्म साध रिद बसै, नानक उधरै साध सुन रसै, साध कै संग सुनो हर नाउ, साध संग हर के गुण गाओ, साध कै संग ना मंते बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै, साध कै संग लगे प्रभ मीठा, साधु कै संग घट घट डीठा, साध संग पहे आज्ञाकारी, साध संगत पही हमारी, साध कै संग मिटे सब रोग, नानक साध भेटे संजोग, साध की महिमा वेद ना जाना है, जेता सुना है तेता बखियाना है, साध की उपमा ते हो गुण ते दूर, साध की उपमा रही भार पूर, साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत, साध की शोभा ऊंच ते ऊंची, साध की शोभा मूच ते मूची, साध की शोभा साध बने आई, नानक साध प्रभ भेद न पाई, सलोक मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखै एक सबिन कोए, नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए, अष्टपदी ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप, ब्रह्मज्ञानी सदा निर्दोख, जैसे सूर सर्व कौ सोख, ब्रह्मज्ञानी कै दृष्ट समान, जैसे राज रंक को लागै तुल पवान, ब्रह्मज्ञानी कै धीरज एक, ज्यों वसुधा को खोदै को चंदन लेप, ब्रह्मज्ञानी का यह गुनाऊ, नानक ज्यों पावक का सह सुभाव, ब्रह्मज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल न लागै जला, ब्रह्मज्ञानी कै मन होए प्रगास, जैसे धर ऊपर आकाश, ब्रह्मज्ञानी कै मित्र सत्र समान, ब्रह्मज्ञानी कै नाही अभिमान, ब्रह्मज्ञानी ऊंच ते ऊंचा, मन अपना है सब ते नीचा, ब्रह्मज्ञानी से जन पहे, नानक जिन प्रभ आप करे, ब्रह्मज्ञानी सगल कीरीना, आत्मरस ब्रह्मज्ञानी चीना, ब्रह्मज्ञानी की सब ऊपर माया, ब्रह्मज्ञानी ते कछु बुरा न पहया, ब्रह्मज्ञानी सदा सामदर्शी, ब्रह्मज्ञानी की दृष्ट अमृत वर्षी, ब्रह्मज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्मज्ञानी की निर्मल युगता, ब्रह्मज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्मज्ञानी एक ऊपर आस, ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्मज्ञानी कै गरीबी समाहा, ब्रह्मज्ञानी पर उपकार उमाहा, ब्रह्मज्ञानी कै नाही धंधा, ब्रह्मज्ञानी ले तावत बंधा, ब्रह्मज्ञानी कै होए सुफला, ब्रह्मज्ञानी सुफल फला, ब्रह्मज्ञानी संग सगल उधार, नानक ब्रह्मज्ञानी जपै सगल संसार, ब्रह्मज्ञानी कै कै रंग, ब्रह्मज्ञानी कै बसै प्रभ संग, ब्रह्मज्ञानी कै नाम आधार, ब्रह्मज्ञानी कै नाम परवार, ब्रह्मज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्मज्ञानी अहं बुद्ध त्यागत, ब्रह्मज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्मज्ञानी कै कर सदा आनंद, ब्रह्मज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्मज्ञानी एक संग हेता, ब्रह्मज्ञानी कै हुए अचिंत, ब्रह्मज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्मज्ञानी जिस करे प्रभ आप, ब्रह्मज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्मज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइए, ब्रह्मज्ञानी कौ बाल बाल जाइए, ब्रह्मज्ञानी कौ खोजै महेसुर।

नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे, ब्रह्म ज्ञानी का सगल मन माहे। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी कौ सदा आदेश। ब्रह्म ज्ञानी का कथया ना जाए अधि आखिर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी कहो सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी साद जीव नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ। ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी श्लोक। उर धारै जो अंतर नाम, सर्व मैं भिखै भगवान। निमुख निमुख ठाकुर नमस्कारै, नानक ओ अपरस सगल निस्तारै। अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस, मन मैं प्रीत निरंजन दर्श। परत्रय रूप न भिखै नेत्र, साधकी टहल संत संग हेत। करन न सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा। गुरु प्रसाद बिखिया पर हरै, मन की बाशना मन ते तरै। इंद्री जित पंच दोख ते रहत, नानक कूट मध्ये को ऐसा अपरस। वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न, विष्ण की माया ते हुए भिन्न। कर्म करत हुए निह कर्म, तिस वैष्णो का निर्मल धर्म। काहू फल की इच्छा नहीं बाचै, केवल भगत कीर्तन संग राचै। मान तन अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल। आप दृढ़ अवरह नाम जपावै, नानक ओ वैष्णो परम गत पावै। भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्यागै दुष्ट का संग। मन ते बिनसै सगला भरम, कर पूजै सगल पार ब्रह्म। साध संग पापा मल खोवै, तिस भगवती कीमत उत्तम होवै। भगवंत की टहल करे नित नीत, मन तन अर्पै बिसन प्रीत। हर के चरण हृदय बसावै, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै। सो पंडित जो मन प्रबोधै, राम नाम आत्मै सोधै। राम नाम सार रस पीवै, उस पंडित कै उपदेश जग जीवै। हर की कथा हृदय बसावै, सो पंडित फिर जोन न आवै। वेद पुराण सिमरत बूझै मूल, सूखम मैं जानै असथूल। चाहो वरना को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा आदेश। बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चाहो वरना मैं जपै को नाम। जो जो जपै तिसकी गत होए, साध संग पावै जन कोए। कर कृपा अंतर उर तारै, पाश प्रेत मुगद पात्र को तारै। सर्व रोग का औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम। काहू जुगत कित न पाइय धर्म, नानक तिस मिलै जिस लिखिया तुर कर्म। जिस कै मन पार ब्रह्म का निवास, तिस का नाम सत रामदास। आत्म राम तिस नदरी आया, दास संतन पाए तिन पाया। सदा निकट निकट हर जान, सो दास दरगह प्रवान। अपने दास को आप कृपा करै, तिस दास काउ सब सोजी परै। सगल संग आत्म उदास, ऐसी जुगत नानक रामदास। प्रभ की आज्ञा आत्म हितावै, जीवन मुक्त सो कहावै। तैसा हरख तैसा उस सोग, सदा आनंद तह नहीं वियोग। तैसा सुवरण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी भिख खाटी। तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंक तैसा राजान। जो वरताए साई जुगत, नानक ओ पुरख कही है जीवन मुक्त। पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जित जित कर रखै तैसा तिन नाओ। आपे करण करावण जोग, प्रभ पावै सोई फुन होग। पसर्यो आप होए अनत तरंग, लखि न जाहे पार ब्रह्म के रंग। जैसी मत दे तैसा प्रगास, पार ब्रह्म करता अभिनाश। सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक पहे निहाल। सलोक उस्तत करे अनेक जन, अंत न पारावार। नानक रचना प्रभ रची, बहुविध अनक प्रकार। अष्टपदी कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी। कई कोट भये तीर्थवासी, कई कोट बन ब्रह्म उदासी। कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपीसर होते। कई कोट आत्म ध्यान धार है, कई कोट कब काब विचार है। कई कोट नवतन नाम त्यावै, नानक करते का अंत ना पावै। कई कोट पहे अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी। कई कोट किरपन कठोर, कई कोट अपेगो आत्म ने कोर। कई कोट पर दर्भ को हिरै,
कई कोट पर दुख ना करे, कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट प्रदेश प्रमाहे, जेत जेत लावो तेत तेत लगना, नानक करते की जाने करता रचना। कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प उपाय, कई कोट पाथर बिरख ने पजाए, कई कोट पवन पानी बैसंत्र, कई कोट देश भू मंडल, कई कोट सस्सी अर सूर नक्षत्र, कई कोट देवदानव इंद्र सिर शत्र, सगल समग्री अपने सूत तारै, नानक जिस जिस भावै तिस तिस निस तारै। कई कोट राजस तामस सातक, कई कोट वेद पुराण सिमरत अर शासत, कई कोट किए रतन समुंद, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट किए चैर जीवे, कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे, कई कोट जख्य किन्नर पिशाच, कई कोट भूत प्रेत सुकर मृगाच, सब ते नेरै सब हूं ते दूर, आप अलिपत रहया भरपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुरग ने वासी, कई कोट जन्मै जीवै मरै, कई कोट बहु जूनी फिरै, कई कोट बैठत ही खाहे, कई कोट घालै थक पाहे, कई कोट किए धनवंत, कई कोट माया में चिंत, जह जह भाणा तह तह राखे, नानक सब किश प्रभ कह हाथे, कई कोट पहे बैरागी, राम नाम संग तिन लिव लागी, कई कोट प्रभ काओ खो जंते, आत्म में पार ब्रह्म लहंते, कई कोट दर्शन प्रभ प्यास, तिन को मिल्यो प्रभ अविनाश, कई कोट मांगै सात संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिन काओ होए आप सो प्रसन्न, नानक ते जन सदा धन धन। कई कोट खाणी अरखंड, कई कोट आकाश ब्रह्मांड, कई कोट हुए अवतार, कई जुगत कीनो बिसथार, कई बार पसरियो पसार, सदा सदा एक एक ओंकार, कई कोट कीने बहु भांत, प्रभ ते हुए प्रभ माहे समात, ताका अंत न जाने कोए, आपे आप नानक प्रभ सोए, कई कोट पार ब्रह्म के दास, तिन होवत आत्म प्रगास, कई कोट तत् के बेते सदा निहारे एको नेत्रे, कई कोट नाम रस पीवै अमर पै साध सद ही जीवै, कई कोट नाम गुण गावै आत्म रस सुख सहज समावै, अपने जन कौ सास सास सुमारे, नानक ओए परमेश्वर के प्यारे सलूक, करण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोई, नानक तिस बलहारण जल सल महियल सोए, अष्टपदी करण करावन करने जोग, जो तिस भावै सोई होग, खिन मैं थाप उथापन हारा, अंत नहीं किश पारा वारा, हुक्मे तार अतार रहावै, हुक्मे उपजाय हुक्म समावै, हुक्मे ऊच नीच व्यवहार, हुक्मे अनकरंग प्रकार, कर कर देखै अपनी वड्याई, नानक सब मह रहया समाई, प्रभ भावै मनुख गत पावै, प्रभ भावै तां पाथर तरावै, प्रभ भावै बिन सास्ति राखै, प्रभ भावै तां हर गुण भाखै, प्रभ पावै तां पतत उधारै, आप करै आपन विचारै, दोहां सिरियां का आप सुवामी, खेलै बिगसै अंतर जामी, जो पावै सो कार करावै, नानक दृष्टि अवर न आवै, काहो मनुख ते क्या होए आवै, जो तिस पावै सोई करावै, इसकै हाथ होए तां सब किश ले, जो तिस पावै सोई करे, अनजानत भिख्या मै रचै, जे जानत आपन आप बचै, भरमे भूला दै दिस थावै, निमख माहे चार कुंट फिरे आवै, कर कृपा जिसे अपनी भगत दे, नानक ते जन नाम मिले, खिन मैं नीच कीट कौ राज, पार ब्रह्म गरीब निवाज, जाका दृष्ट कछु न आवै, तिस तत्काल दै दिस प्रगटावै, जा कौ अपनी करै बख्शीस, ताका लेखा ना गन जगदीस, जियो पिंड सब तिसकी रास, घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रकाश, अपनी बणत आप बनाई, नानक जीवै देख बढ़ाई, इसका बल नाही इस हाथ, करण करावन सर्ब को नाथ, आज्ञाकारी बपुरा जियो, जो तिस भावै सोई फुन थियो, कबहू ऊच नीच मैं बसै, कबहू सोग हरख रंग हसै, कबहू नेंद चिंद व्यवहार, कबहू ऊब आकाश पयाल, कबहू बेता ब्रह्म विचार, नानक आप मिलावन हार, कबहू नृत करे बहु भांत, कबहू सोए रहे दिन रात, कबहू महाक्रोध विकराल, कबहू सर्व की होतरवाल,
कबहू होए बहै बड़ राजा कबहू पेखारी नीच का साजा कबहू आप कीरत में आवै कबहू भला भला कहावै ज्यों प्रभ राखै तिव ही रहै गुर प्रसाद नानक सच कहै कबहू होए पंडित करे बखियान कबहू मोन तारी लावै ध्यान कबहू तट तीरथ इसनान कबहू सिद्ध साधिक मुख ज्ञान कबहू कीट हस्त पतंग होए जिया अनक ज्योन भरमै परमिया नाना रूप ज्यो स्वांगी दिखावै ज्यो प्रभ भावै तिव नचावै ज्यो तिस भावै सोई होए नानक दूजा अवर न कोय कबहू साध संगत एहो पावै उस अस्थान ते बहुर न आवै अंतर होए ज्ञान प्रगास उस अस्थान का नहीं विनाश मन तन नाम रते इक रंग सदा बस है पार ब्रह्म कै संग ज्यों जल में जल आए खटाना त्यों ज्योति संग ज्योत समाना मिट गए गवन पाए विश्राम नानक प्रभ कै सद कुरबान सलोक सुखी बसै मसकीनिया आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपदी जिसका अंतर राज अभिमान सो नरक पाती होवत स्वान जो जाने मैं जीवन वंत सो होवत बिष्टा का जंत आपस को कर्मवंत कहावै जन्म मरै बहु जोन परमावै धन भूमिका जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा ज्ञान कर कृपा जिसका हृदय गरीबी बसावै नानक इहा मुकत आगै सुख पावै धनवंता होए कर गर्भावै तृण समान काश संग ना जावै बहु लस्कर मानुख ऊपर करे आस पल पीतर ताका होए विनाश सब ते आप जाने बलवंत खिन में होए जाए पसमंत किसे ना बदै आप अहंकारी धर्म राय तिस करे खुआरी गुर प्रसाद जाका मिटे अभिमान सो जन नानक दरगह परवान कोट कर्म करै हों तारे श्रम पावै सगले बिरथारे अनक तपस्या करे अहंकार नरक सुरग फिर अवतार अनक जतन कर आत्म निंद्रवै हर दरगह कहो कैसे गवै आपस कौ जो भला कहावै तिसे भलाई निकट न आवै सर्ब की रेन जाका मन होए कहो नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जानै मुझ ते कश होए तब इस कौ सुख नाही कोए जब ए जानै मैं किश करता तब लग गर्भ जोन मैं फिरता जब धारै को बैरी मीत तब लग नहीं चल नाही चीत जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय देश सजाए प्रभ कृपा ते बंधन टूटै गुर प्रसाद नानक हौ छूटै सहस खटे लख को उठतावै त्रिपत न आवै माया पाछै पावै अनेक भोग बिख्या के करै नह त्रिपतावै खप खप मरै बिना संतोख नहीं को राजै सुपन मनोरथ बिरथे सब का जय नाम रंग सर्ब सुख होए बड़भागी किसे प्राप्त होए करन करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करण करावन करने हार इसके हाथ कहा विचार जैसी दृष्ट करे तैसा होए आपे आप प्रभ सोए जो के शकीनो सो अपने रंग सब ते दूर सब हूं कै संग बूझै देखाए करै विवेक आपे एक आपे अनेक मरै न बिनसै आवै न जाए नानक साध ही रहया समाए आप उपदेसै समझे आप आपे रचया सब के साथ आप कीनो आपन विस्थार सब काश उसका उ करने हार उसते पिन कहो हो किश होए थान थनंतर एक है सोए आपने चले तो आप करने हार कहू तक करे रंग अपार मन मह आप मन अपने माहे नानक कीमत कह न जाए सत सत सत प्रभ स्वामी गुरु प्रसाद किने वख्यानी सच सच सच सब कीना कोट मधे किने बिरलै चीना भला भला भला तेरा रूप अत सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट सुने श्रवण बख्याणी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत श्लोक संत सरण जो जन परै सो जन उदरण हार संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी संत कै दुखन आरजा कटै संत कै दुखन जमते नहीं छुटै संत कै दुखन सुख सब जाए संत कै दुखन नरक में पाए संत कै दुखन मत होए मलीन संत कै दुखन सोभा ते हीन संत के हते को रखे न कोए संत कै दुखन थान भ्रष्ट होए
संत कृपाल कृपा जे करै, नानक संत संग निंदक भी तरै। संत के दुखन ते मुख पवै, संतन के दुखन कागज ज्यों लवै। संतन के दुखन सर्प जोन पाए, संत के दुखन त्रिगद जोन किरमाए। संतन के दुखन तृष्णा मैं जलै, संत के दुखन सब को शलै। संत के दुखन तेज सब जाए, संत के दुखन नीच नीचाए। संत दुखी का थाओ को नाहे, नानक संत पावे ता ओए पी गत पाए। संत का निंदक महात ताई, संत का निंदक खेन टिकन न पाई। संत का निंदक महात्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। संत का निंदक राज ते हीन, संत का निंदक दुखिया अर दीन। संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा बिजोग। संत की निंदा दुख मैं दुख, नानक संत भावै ता उस कापी होए मोख। संत का दुखी सदा अपवित, संत का दुखी किसे का नहीं मित। संत के दुखी को डान लागै, संत के दुखी को सब त्यागै। संत का दुखी महा अहंकारी, संत का दुखी सदा बिकारी। संत का दुखी जन्म मरै, संत की दुख ना सुख ते तरै। संत के दुखी को ना ही ठाओ, नानक संत पावे तन लय मिलाए। संत का दुखी अद बीच ते टूटै, संत का दुखी कित काज ना पहुँचै। संत के दुखी को ध्यान परमाइयै, संत का दुखी उजड़ पाइयै। संत का दुखी अंतर के थो था, ज्यों सास बिना मृतक की लोथा। संत के दुखी की जड़ किश नाहे, अपन बीज आपे ही खाहे। संत के दुखी को अवरना रखन हार, नानक संत पावे ता लय उबार। संत का दुखी इउं बिल लाए, ज्यों जल बिहून मछली तड़फड़ाए। संत का दुखी भूखा नहीं राजा, ज्यों पावक ईधन त्रपै। संत का दुखी छुटै अकेला, ज्यों बुआड़ तिल खेत माहे दोहेला। संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी साध मिथ्या कहत। किरत निंदक का तुर ही पया, नानक ज्योतिष पावै सोई थिया। संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए, संत के दुखी को दरगाह मिलै सजाए। संत का दुखी सदा सहकाइय, संत का दुखी ना मरै ना जीवाइय। संत के दुखी की पूजै ना आसा, संत का दुखी उठ चलै निराशा। संत का दुख न त्रष्टै कोए, जैसा पावै तैसा कोई होए। पया किरत न मिटै कोए, नानक जानै सच्चा सोए। सब घट तिसके ओ करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार। प्रभ की उस्तत करहु दिन रात, तिसे त्यावहो सास गिरास। सब काश वरतै तिसका किया, जैसा करे तैसा को थिया। अपना खेल आप करने हार, दूसर कौन कहे विचार। जिसनु कृपा करै तिस आपन नाम दे, बड़भागी नानक जन से सलोक। तज हो सियानप सुरजन हो, सिमरो हर हर राय। एक आस हर मन रखो, नानक दुख परम पहु जाए। अष्टपदी मानुख की टेक बिरती सब जान, देवन को एक है भगवान। जिसके दिए रहे अघाए, बहुर न कृष्ण लागे आए। मार रख है एक वाप, मानुख कह कृष्णा ही हाथ। तिसका हुक्म बूझ सुख होए, तिसका नाम रख कंठ परोए। सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक बेगन न लागै कोए। उस्त मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार। निर्मल रसना अमृत पियो, सदा सुहेला कर ले जियो। नैनो पेख ठाकुर का रंग, साध संग बिन सब संग। चरण चलाओ मार्ग गोबिंद, मिटाए पाप जपिए हर बिंद। कर हर कर्म श्रवण हर कथा, हर दरगह नानक ऊजल मथा। बड़ भागी ते जन जग माहे, सदा सदा हर के गुण गाहे। राम नाम जो करे विचार, से तनवंत गनी संसार। मन तन मुख बोले हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी। एको एक एक पछाने, ए तो उत कियो सोजी जाने। नाम संग जिसका मन मानिया, नानक तिरह निरंजन जानिया। गुर प्रसाद आपन आप सुजै, तिसकी जानो तृष्णा बुझै। साध संग हर हर जस कहत, सर्व रोग त्यो हर जन रहत। आन दिन कीर्तन केवल बख्यान, ग्रस्त मैं सोई निर्बान। एक ऊपर जिस जन की आसा, तिस की कटिए जम की फासा। पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तिसै न लागै दुख।
जिस को हर प्रभ मन चित आवे सो संत सुहेला नहीं डुलावे जिस प्रभ अपना कृपा करे सो सेवक कहो किस ते डरे जैसा सतै सा दृष्टाया अपने कार्य में आप समाया सोदत सोदत सोदत सीजिया गुरु प्रसाद तत् सब बूजिया जब देखो तब सब किश मूल नानक सो सूखम सोई असथूल नह किश जन्मे न किश मरे आपन चले तो आप ही करे आवन जावन दृष्ट आन दृष्ट आज्ञाकारी धारी सब श्रेष्ठ आपे आप सगल मैं आप अनक जुगत राच थाप उथाप अभिनाशी नाही किश खंड धारण धार रहे ब्रह्मांड अलख अभेव पुरख प्रताप आप जपाए त नानक जाप जिन प्रभ जाता सुसु बावंत सगल संसार उदरह तिन मंत प्रभ के सेवक सगल उदाहरण प्रभ के सेवक दुख बिसारण आपे मेल लय कृपाल गुरु का शब्द जप पहे निहाल उनकी सेवा सोई लागे जिसनो कृपा करे बड़ पागे नाम जप तपावे विश्राम नानक तिन पुरख को उत्तम कर मान जो किश कराय सो प्रभ कै रंग सदा सदा बसै हर संग सहज सुभाए होवै सो होए करण हार पछाणै सोए प्रभ का किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना जिसते उपजे जिसते उपजे तिस माहे समाए ओए सुख निधान उन्हों बन आए आपस को आप दिनो मान नानक प्रभ जन एको जान सलोक सर्व कला भरपूर प्रभ बिरथा जन नहार जाके सिमरन उधरी है नानक तिस बलहार अष्टपदी टूटे गांडन हर गोपाल सर्ब जिया पे प्रतपाल सगल की चिंता जिस मन माहे तिस ते बिरथा कोई नाही रे मन मेरे सदा हर जाप अभिनाशी प्रभ आपे आप आपन किया कछु न होए जे सो प्राणी लोचै कोए तिस बिन नाही तेरे किश काम गत नानक जाप एक हर नाम रूपवंत होए नाही मोहै प्रभ की जोत सगल घाट सो है धनवंता होए क्या को करबै जा सब किश तिस का दिया दरबै अत सूरा जे को कहावै प्रभ की कला बिना कहता वै जे को होए बाहे दातार तिस दिन हार जाने गवार जिस गुर प्रसाद टूटे हो रोग नानक सो जन सदा आरोग ज्यों मंदर को थामे थमन त्यों गुर का शब्द मन अस थमन ज्यों पाखाण नाव चढ़ तरै प्राणी गुर चरण लगत निस तरै ज्यों अंधकार दीपक प्रगास गुर दर्शन देख मन होए बिगास ज्यों महा उद्यान में मार्ग पावै त्यों साधु संग मिल ज्योत प्रगटावै तिन संतन की बाशों तूर नानक की हर लुचा पूर मन मूरख काहे बेल लाइए पुरब लेखे का लिखिया पाईए दुख सुख प्रभ देवन हार अवर त्याग तू तिसै चितार जो का शुकर है सोई सुख मान भूला काहे फिरे अजान कौन बस्त आई तेरे संग लपट रहे हो रस लोभी पतंग राम नाम जप हिरदे माहे नानक पात से ती घर जाहे जिस वखर को लैण तू आया राम नाम संतन कर पाया ताज अभिमान लेहो मन मोल राम नाम हृदय में तोल लाद के संत संग चाल अवर त्याग बिख्या जंजाल धन धन कहे सब कोए मुख उजल हर दर गै सोए एहो वापार विरला वापार है नानक ता कहे सद बलहार है चरण साध के धोए तोए पियो अर्प साध को अपना जियो साध की धूर करो स्नान साधु प्रजाइए कुर्बान साध सेवा वडभागी पाईए साध संग हर कीर्तन गाइए अनक बिघन ते साधु राखे हर गुण गाए अमृत रस चाखै ओट गही संत दर आया सर्ब सुख नानक ते पाया मृतक को जीवल नहार भूखे को देवत आधार सर्ब निधान जाकी दृष्टि माहे पूर्व लेखे का लहना पाहे सब किश तिस कहो करने जोग तिस बिन दूसर हुआ ना होग जप जन सदा सदा दिन रहनी सब ते ऊच निर्मल ए करनी कर कृपा जिस कहो नाम दिया नानक सो जन निर्मल थिया जाके मन गुर की प्रतीत तिस जन आवै हर प्रभ चीत भगत भगत सुनिए ते हो लोए जाके हृदय एको होए सच करनी सच ताकी रहत सच हृदय सात मुख कहत
साची दृष्ट साचा आकार सच वरतै साचा पासार पार ब्रह्म जिन सच कर जाता नानक सूजन सच समाता सलोक रूप न रेख न रंग केशव त्रेहो गुण ते प्रभ भिन्न तिसै बुझाए नानका जिस हुवै सुप्रसन्न अष्टपदी अभिनाशी प्रभ मन मैं राख मानुख की तू प्रीत त्याग तिस ते पर नाही किश कोए सर्व निरंतर एको सोए आपे बिना आपे दाना गहर गंभीर गहीर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निधान दयाल बख्शंद साध तेरे की चरणी पाओ नानक कै मन एहो अनराओ मनसा पूर्ण सरना जोग जो कर पाया सोई होग हरन भरन जा का नेत्र फोरत इसका मंत्र ना जाने होर आनंद रूप मंगल सद जा कै सर्व थोक सुनिए घर ताकै राज मैं राज जोग मैं जोगी तप मैं तपीसर गृहस्थ मैं भोगी त्याए त्याए भगतै सुख पाया नानक तिस पुरख का किने अंत न पाया जाकी लीला की मित नाहे सगल देव हारे अवगाहे पिता का जन्म के जाने पूत सगल परोई अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे जन दास नाम त्यावै से तेहो गुण मैं जाको परमाए जन्म मरै फिर आवै जाए ऊच नीच तिस के अस्थान जैसा जन आवै तैसा नानक नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना पेख करै एक रंग नाना बेद कीनो बिस्थार प्रभ अभिनाशी एक ओंकार नाना चलित करे किन माहे पूर रहे ओ पूर्ण सब ठाए नाना बेद कर बनत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब कहट तिसके सब तिसके ठाओ जाप जाप जीव नानक हर नाओ नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खांड ब्रह्मांड नाम के तारे सिमरत वेद पुराण नाम के तारे सुनन ज्ञान तिहान नाम के तारे आकाश पाताल नाम के तारे सगला आकार नाम के तारे पुरिया सब भवन नाम कै संग उदरे सुन श्रवण कर कृपा जिसे अपने नाम लाए नानक चौथे पद मैं सो जन गत पाए रूप सत जाका सत अस्थान पर पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जाकी बाणी सत पुरख सब माहे समाणी सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करणी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसे सब भली सत नाम प्रभु का सुखदाई विश्वास सत नानक गुरते पाई सत बचन साधु उपदेश सत ते जन जा कै हृदय प्रवेश सत निरत बूझे जे कोए नाम जपत ताकी गत होए आप सत किया सब सत आपे जने अपनी मेत गत जिसके श्रेष्ठ सो करने हार अवर न बूझ करत विचार करते के मित न जाने किया नानक जो ते सुभावै सो वर्तिया बिसमन बिसम पहे बिसमाद जिन बूझिया तिस आया स्वाद प्रभ कै रंग राच जन रहे गुर कै बचन पदार्थ लहे ओए दाते दुख काटन हार जाकै संग तरै संसार जन का सेवक सो वडभागी जन कै संग एक लिव लागी गुण गोबिंद कीर्तन जन गावै गुर प्रसाद नानक फल पावै श्लोक आद सच जुगाद सच है पे सच नानक होसी पे सच अष्टपदी चरण सत सत परसनहार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पेखण हार नाम सत सत त्यावन हार आप सत सत सब तारी आपे गुण कारी शब्द सत सत प्रभ बखता सुरत सत सत जस सुनता बुजन हर को सत सब होए नानक सत सत प्रभ सोए सत स्वरूप हृदय जिन मान्या करण करावन तिन मूल पछान्या जा कै हृदय विश्वास प्रभ आया तत् ज्ञान ते सम्मान प्रगटाया भय ते निरभउ होए बसाना जिस ते उपजिया तिस माहे समाना बस्त माहे ले बस्त गडाई ताको भिन्न न कहना जाई बूझै बूझन हर बबेक नारायण मिले नानक एक ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी ठाकुर के सेवक है मन प्रतीत ठाकुर के सेवकी निर्मल रीत ठाकुर को सेवक जाने संग प्रभु का सेवक नाम कै रंग सेवको
प्रभ पालन हारा सेवकी राख निरंकारा सो सेवक जिस दया प्रभ तार नानक सो सेवक सास सुमार आपने जन का पर्दा ढाक अपने सेवक की सर पर राख अपने दास को दे वडाई अपने सेवक कहो नाम जपाई अपने सेवक की आप पत राख ताकि गत में तो कोई ना लाख है प्रभ के सेवक कहो को ना पहुंचे प्रभ के सेवक ऊच दे ऊचे जो प्रभ अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दै दिस प्रगटाया निकी कीरी मैं कल रख है भासम करै लस्कर कोट लख है जिसका सास न काढ़त आप ताकौ राखत देकर हाथ मानस जतन करत बहु भांत तिसके कर तब बिरथे जात मारे न रखे अवर न कोए सर्ब जिया का रखा सोए काहे सोच करे रे प्राणी जप नानक प्रभ अलख विडाणी बारंबार बार प्रभ जपिए पी अमृत ए मन तन त्रपिए नाम रतन जिन गुरमुख पाया तिस किश अवर नाही दृष्टाया नाम तन नामो रूप रंग नामो सुख हर नाम का संग नाम रस जो जन तृप तने मन तन नामे नाम सम्माने उठत बैठत सोवत नाम कहो नानक जन कै सद काम बोलो जस जिहबा दिन रात प्रभ अपने जन की निंदात करह भगत आत्म कह चाए प्रभ अपने स्यों रह समाए जो हुआ होवत सो जाने प्रभ अपने का हुक्म पछाने तिसकी महिमा कौन बखानो तिसका गुण कहे एक न जानो आठ पहर प्रभ से हजूरे कहो नानक सही जन पूरे मन मेरे तिन की ओट ले मन ताने अपना तिन जन दे जिन जन अपना प्रभु पछाता सो जन सर्व थोक का दाता तिसकी शरण सर्व सुख पावे तिसके दर सब पाप मिटावे अवर स्याण तसगली शाड तिस जन की तू सेवा लाग आवन जान होवी तेरा नानक तिस जन के पूजो सद पैरा सलोक सतपुरख जिन जाने सतपुर तिस का नाओ तिस का संग सिख उदर है नानक हर गुण गाओ अष्टपदी सतगुर सिख की करै प्रतपाल सेवक कौ गुर सदा दयाल सिख की गुर दुरमत मल हिरै गुर बचनी हर नाम उचरै सतगुर सिख के बंधन काटै गुर का सिख विकार ते हटै सतगुर सिख को नाम तन दे गुर का सिख बड़भागी हे सतगुर सिख का हलत पलत सवारै नानक सतगुर सिख को जी नाल समारै गुर के ग्रह सेवक जोर है गुर की आज्ञा मन में सहै आपस कौ कर कछ न जनावै हर हर नाम हृदय सद तिहावै मन बेचै सतगुर कै पास तिस सेवक के कारज रास सेवा करत होए नेह कामे तिस कौ होत प्राप्त स्वामी अपनी कृपा जिस आप करे नानक सो सेवक गुर की मत ले बिस बिसवे गुर का मन मन सो सेवक परमेश्वर की गत जाने सो सतगुरु जिस हृदय हर नाओ अनक बार गुर को बल जाओ सर्व निधान जी का दाता आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म मैं जन जन मैं है पार ब्रह्म एक है आप नहीं कश भरम सह सियाण पर लया न जाइए नानक ऐसा गुर वडभागी पाइए सफल दर्शन पेखत पुनीत परसत चरण गत निर्मल रीत भेटत संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगा गवे सुनकर बचन करन आघने मन संतोख आत्म पतियने पूरा गुर आख्याओ जा का मंत्र अमृत दृष्ट पेखै होए संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस पावे तिस लय मिलाए जिहबा एक उस्तत अनेक सत पुरख पूर्ण बबेक काहू बोल ना पहुंचत प्राणी अगम अगोचर प्रभ निरबानी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकि कीमत किने न पाई अनक भगत बंधन नित करै चरण कमल हृदय सिमरै सत बलहारी सत गुर अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने एहो हर सुपावे जन कोए अमृत बीवे अमृत सो होए उस पुरख का नाही कदे विनाश जाके मन प्रगटे गुण तास आठ पैर हर का नाम ले सच उपदेश सेवक कहो दे मोह माया कै संग न लेप मन में राखै हर हर एक अंधकार दीपक प्रगासे नानक भरम मोह दुख तहते नासे तपत माहे ठांड वरताई आनंद पहया दुख नाठे पहाई जन्म मरण के मिटे अंदेसे साधु के पूर्ण उपदेसे
ਭਾਉ ਚੂਕਾ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਬਸੇ ਸਗਲ ਬਿਆਦ ਮਨ ਤੇ ਖਾਏ ਨਸੇ ਜਿਸ ਕਾ ਸਾਥਨ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਪ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰੀ ਥਿਤ ਪਾਈ ਚੂਕੇ ਭ੍ਰਮ ਗਵਨ ਸੁਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਸਰਵਨ ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ ਸਰਗੁਣ ਪੀਓ ਹੀ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਿਨ ਸਗਲੀ ਮੋਹੀ ਆਪਣੇ ਚਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਬਨਾਏ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਪਾਏ ਹਰ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਸੋਏ ਓਤ ਪੋਤ ਰਵਿਆ ਰੂਪ ਰੰਗ ਪਹਿ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਰਚ ਰਚਨਾ ਆਪਣੀ ਕਲ ਤਾਰੀ ਅਨਕ ਬਾਰ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਲੋਕ ਸਾਥ ਨਾ ਚੱਲੈ ਬਿਨ ਭਜਨ ਵਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਸ਼ਾਰ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕਮਾਵਨਾ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਤਨ ਸਾਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ ਏਕ ਸਿਮਰ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਅਵਰ ਉਪਾਵ ਸਭ ਮੀਤ ਬਿਸਾਰੋ ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਿਧ ਮੈਂ ਉਰਤਾਰੋ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਮਰਥ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਗਹੋ ਨਾਮ ਹਰ ਵਤ ਏ ਤਨ ਸੰਚੋ ਹੋਵੋ ਭਗਵੰਤ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤ ਏਕ ਆਸਰਾ ਕੋ ਮਨ ਮਾਹੇ ਸਰਬ ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਮਿਟ ਜਾਏ ਜਿਸ ਤਨ ਕੋ ਚਾਰ ਕੁੰਡ ਉਠਤਾ ਵੈ ਸੋ ਤਨ ਹਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਾਵੈ ਜਿਸ ਸੁਖ ਕੋ ਨਿਤ ਬਾਛੈ ਮੀਤ ਸੋ ਸੁਖ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਸ ਸੁਭਾ ਕੋ ਕਰੈ ਭਲੀ ਕਰਨੀ ਸਾ ਸੁਭਾ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸਰਣੀ ਅਨਕ ਉਪਾਵੀ ਰੋਗ ਨਾ ਜਾਏ ਰੋਗ ਮਿਟੈ ਹਰ ਅਵਖ ਦਲਾਏ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਮੈਂ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਜਪ ਨਾਨਕ ਦਰਗਹਿ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਨ ਪ੍ਰਭੋ ਦੋ ਹਰ ਕੈ ਨਾਏ ਦੈ ਦਿਸ ਧਾਵ ਤੇ ਆਵੈ ਠਾਏ ਤਾਕੋ ਬਿਘ ਨ ਲਾਗੈ ਕੋਏ ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਬਸੈ ਹਰ ਸੋਏ ਕਲ ਤਾਤੀ ਠਾਡਾ ਹਰ ਨਾਓ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਓ ਭਉ ਬਿਨ ਸਹਿ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਆਸ ਭਗਤ ਪਾਏ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਤਿਤ ਘਰ ਜਾਏ ਬਸੈ ਅਬਿਨਾਸੀ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਾਟੀ ਜਮ ਫਾਸੀ ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਕਹੈ ਜਨ ਸਾਚਾ ਜਨਮ ਮਰੈ ਸੋ ਕਾਚੋ ਕਾਚਾ ਆਵਾ ਗਵਨ ਮਿਟੈ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵ ਆਪ ਤਿਆਗ ਸਰਣ ਗੁਰਦੇਵ ਇਉਂ ਰਤਨ ਜਨਮ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰ ਹਰ ਹਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ ਅਨਕੋ ਭਾਵਨਾ ਛੂਟਣ ਹਾਰੇ ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਬੇਦ ਵਿਚਾਰੇ ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੋ ਮਨ ਲਾਏ ਮਨ ਬੰਸ਼ਤ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਏ ਸੰਗ ਨ ਚਾਲਸ ਫੇਰੈ ਧਨਾ ਤੂੰ ਕਿਆ ਲਪਟਾਵੈ ਮੂਰਖ ਮਨਾ ਸੋਤਮੀਤ ਕੁਟੰਬ ਅਰ ਬਨਤਾ ਇਨ ਤੇ ਕਹੋ ਤੁਮ ਕਵਨ ਸੁਨਾਥਾ ਰਾਜ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਵਿਸਥਾਰ ਇਨ ਤੇ ਕਹੋ ਕਵਨ ਛੁਟਕਾਰ ਅਸ ਹਸਤੀ ਰਥ ਅਸ ਵਾਰੀ ਝੂਠਾ ਡੰਫ ਝੂਠ ਪਾਸਾਰੀ ਜਿਨ ਦੀਏ ਤਿਸ ਬੁਝੇ ਨਾ ਬੇਗਾਨਾ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਨਾਨਕ ਪਾਸ਼ੋ ਤਾਨਾ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਤੂੰ ਲੇ ਇਆਨੇ ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਡੂਬੇ ਸਿਆਨੇ ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੋ ਮਨ ਮੀਤ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਤੁਮਾਰੋ ਚੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਾਖੋ ਮਨ ਮਾਹੇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਬਿਖ ਜਾਏ ਆਪ ਜਪੋ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾ ਵਹੋ ਸੁਨਤ ਕਹਿਤ ਰਹਿਤ ਗਤ ਪਾਵਹੋ ਸਾਰ ਭੂਤ ਸਤ ਹਰ ਕੋ ਨਾਉ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਓ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਤੇਰੀ ਉਤਰਸ ਮੈਲ ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਹੋ ਮੈਂ ਬਿਖ ਫੈਲ ਹੋਹੇ ਅਚਿੰਤ ਬਸੈ ਸੁਖ ਨਾਲ ਸਾਸ ਗ੍ਰਾਸ ਹਰ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ ਛਾੜ ਸਿਆਣਪ ਸਗੜੀ ਮਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਵੇ ਸੱਚ ਤਨਾ ਹਰ ਪੂੰਜੀ ਸੰਚ ਕਰੋ ਵਿਵਹਾਰ ਇਹਾਂ ਸੁਖ ਦਰਗਹਿ ਜੈਕਾਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਦੇਖ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੇ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਏਕੋ ਜਪ ਏਕੋ ਸਲਾਹੇ ਏਕ ਸਿਮਰ ਏਕੋ ਮਨ ਆਹੇ ਏਕਸਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਅਨੰਤ ਮਨ ਤਨ ਜਪ ਏਕ ਭਗਵੰਤ ਏਕੋ ਏਕ ਏਕ ਹਰ ਆਪ ਪੂਰਨ ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਅਨਕ ਵਿਸਥਾਰ ਏਕ ਤੇ ਪਹੇ ਏਕ ਆਰਾਧ ਪ੍ਰਾਸ਼ਤ ਗਏ ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਏਕ ਪ੍ਰਭ ਦਾ ਰਾਤਾ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਏਕ ਜਾਤਾ ਸਲੋਕ ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਪਰਿਆ ਤਉ ਸਰਨਾਏ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਾਚਕ ਜਨ ਜਾਚੈ ਪ੍ਰਭਦਾਨ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੋ ਹਰ ਨਾਮ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਮੰਗੋ ਧੂਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮੇਰੀ ਸਰਧਾ ਪੂਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਸਾਸ ਸਾਸ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮੇ ਧਿਆਵੋ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਲਾਗੈ ਪ੍ਰੀਤ ਭਗਤ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਨਿਤ ਨੀਤ ਏਕ ਓਟ ਏਕੋ ਆਧਾਰ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਸਾਰ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਹਾਂ ਸੁਖ ਹੋਏ ਹਰ ਰਸ ਭਾਵੈ ਬਿਰਲਾ ਕੋਏ ਜਿਨ ਚਾਖਿਆ ਸੇ ਜਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਡੋਲਾਨੇ ਸੁਭਰ ਭਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਰੰਗ ਉਪਜੇ ਚਾਉ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਪਰੇ ਸਰਣ ਆਨ ਸਭ ਤਿਆਗ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਗਾਸ ਆਨ ਦਿਨ ਲਿਵ ਲਾਗ ਬੜਭਾਗੀ ਜਪਿਆ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੁਖ ਹੋਏ ਸੇਵਕ ਕੀ ਮਨਸਾ ਪੂਰੀ ਪਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਮਤ ਲਈ ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਹੋਇਓ ਦਇਆਲ ਸੇਵਕ ਕੀਨੂੰ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲ ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਮੁਕਤ ਜਨ ਪਾਇਆ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਭ੍ਰਮ ਗਾਇਆ ਇਸ਼ ਪੁਨੀ ਸਰਧਾ ਸਭ ਪੂਰੀ ਰਵ ਰਹਿਆ ਸਤ ਸੰਗ ਹਜੂਰੀ ਜਿਸਕਾ ਸਾਥਨ ਲਿਆ ਮਲਾਏ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਨਾਮ ਸਮਾਏ ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਘਾਲ ਨਾ ਭਾਨੈ ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਕੀਆ ਜਾਨੈ ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ
ਜਿਨ ਸਭ ਕੇਸ਼ ਦੀਆ ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਜੀਵਨ ਜੀਆ ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਅਗਨ ਮੈਂ ਰਾਖੈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋ ਬਿਰਲਾ ਲਾਖੈ ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਬਿਖ ਤੇ ਕਾਢੈ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਟੂਟਾ ਗਾਂਢੈ ਗੁਰਪੂਰੈ ਤਤ ਇਹ ਬੁਝਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕ ਜਨ ਤਿਹਾਇਆ ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਕਰੋ ਇਹ ਕਾਮ ਆਨ ਤਿਆਗ ਜਪ ਹੋ ਹਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵਹੋ ਆਪ ਜਪ ਹੋ ਅਵਰਹ ਨਾਮ ਜਪਾਵਹੋ ਭਗਤ ਪਾਏ ਤਰੀਏ ਸੰਸਾਰ ਬਿਨ ਭਗਤੀ ਤਨ ਹੋਸੀ ਸ਼ਾਰ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਸੂਖ ਨਿਧ ਨਾਮ ਬੂਢਤ ਜਾਤ ਪਾਏ ਬਿਸਰਾਮ ਸਗਲ ਦੁਖ ਕਾ ਹੋਵਤ ਨਾਸ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪ ਹੋ ਗੁਣ ਤਾਸ ਉਪਜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਚਾਉ ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਇਹੀ ਸੁਆਉ ਨੇਤਰੋਂ ਭੇਖ ਦਰਸ ਸੁਖ ਹੋਏ ਮਨ ਬਿਗਸੈ ਸਾਧ ਚਰਨ ਧੋਏ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੇ ਮਨ ਤਨ ਰੰਗ ਬਿਰਲਾ ਕੋ ਪਾਵੇ ਸੰਗ ਏਕ ਬਸਤ ਦੀਜੈ ਕਰ ਮਾਇਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਮ ਜਪ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਪਮਾ ਕਹੀ ਨ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਰਹਿਆ ਸਰਬ ਸਮਾਏ ਪ੍ਰਭ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਭਗਤ ਵਛਲ ਸਦਾ ਕਿਰਪਾਲ ਅਨਾਥ ਨਾਥ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਸਰਬ ਘਟਾ ਕਰਤ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਕਾਰਨ ਕਰਤਾਰ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ ਜੋ ਜੋ ਜਪੈ ਸੋ ਹੋਏ ਪੁਨੀਤ ਭਗਤ ਪਾਏ ਲਾਵੈ ਮਨ ਹੀਤ ਹਮ ਨਿਰਗੁਣੀ ਯਾਰ ਨੀਚ ਅਜਾਨ ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੀ ਸਰਣ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਸਰਬ ਬੈਕੁੰਠ ਮੁਕਤ ਮੋਖ ਪਾਏ ਏਕ ਨਿਮਕ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਅਨਕ ਰਾਜ ਭੋਗ ਬੜੇ ਆਈ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਕਥਾ ਮਨ ਪਾਈ ਬਹੁ ਭੋਜਨ ਕਾ ਪ੍ਰਸੰਗੀਤ ਰਸਨਾ ਜਪਤੀ ਹਰ ਹਰ ਨੀਤ ਭਲੀ ਸੋ ਕਰਨੀ ਸੋਭਾ ਧਨਵੰਤ ਹਿਰਦੈ ਬਸੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰਮੰਤ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਦੇਹੁ ਨਿਵਾਸ ਸਰਬ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਾਸ਼ ਸਲੋਕ ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪ ਆਪਨ ਕੀਆ ਨਾਨਕਾ ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰ ਜਾਪ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਬ ਆਕਾਰ ਏਕਾਸ਼ ਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੇਤਾ ਪਾਪ ਪੁਨ ਤਬ ਕਹਿਤੇ ਹੋਤਾ ਜਬ ਧਾਰੀ ਆਪਨ ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਤਬ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸ ਸੰਗ ਕੁਮਾਤ ਜਬ ਇਸ ਕਾ ਵਰਣ ਚਿਹਨ ਨਾ ਜਾਪਤ ਤਬ ਹਰਤ ਸੋਗ ਕਹੋ ਕਿਸੇ ਵਿਆਪਤ ਜਬ ਆਪਣ ਆਪ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਬ ਮੋਹ ਕਹਾਂ ਕਿਸ ਹੋਵਤ ਭਰਮ ਆਪਨ ਕੇਲ ਆਪ ਵਰਤੀਜਾ ਨਾਨਕ ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਨ ਦੂਜਾ ਜਬ ਹੋਵਤ ਪ੍ਰਭ ਕੇਵਲ ਧਨੀ ਤਬ ਬੰਦ ਮੁਕਤ ਕਹੋ ਕਿਸ ਕਹੋ ਗਨੀ ਜਬ ਇਕ ਹੈ ਹਰ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ਤਬ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਕਹੋ ਕੌਣ ਅਵਤਾਰ ਜਬ ਨਿਰਗੁਣ ਪ੍ਰਭ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਤਬ ਸੇਵ ਸਾਖਤ ਕਹੋ ਕੀ ਤਠਾਏ ਜਬ ਆਪੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਧਰੈ ਤਬ ਕਵਨ ਨਿਡਰ ਕਵਨ ਕਤ ਡਰੈ ਆਪਨ ਚਲੇ ਤੋ ਆਪ ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਨਾਨਕ ਠਾਕੁਰ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ਅਬਿਨਾਸੀ ਸੁਖ ਆਪਨ ਆਸਨ ਤਹ ਜਾਨਮ ਮਰਨ ਕਹੋ ਕਹਾ ਬਿਨਾਸਨ ਜਬ ਪੂਰਨ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਤਬ ਜਮ ਕੀ ਤ੍ਰਾਸ ਕਹੋ ਕਿਸ ਹੋਏ ਜਬ ਅਬਗਤ ਅਗੋਚਰ ਪ੍ਰਭ ਏਕਾ ਤਬ ਚਿਤ੍ਰਗੁਪਤ ਕਿਸ ਪੂਛਤ ਲੇਖਾ ਜਬ ਨਾਥ ਨਿਰੰਜਨ ਅਗੋਚਰ ਅਗਾਧੇ ਤਬ ਕੌਣ ਛੁਟੇ ਕੌਣ ਬੰਧਨ ਬਾਧੇ ਆਪਣ ਆਪ ਹੀ ਅਚਰਜਾ ਨਾਨਕ ਆਪਣ ਰੂਪ ਆਪ ਹੀ ਉਪਰਜਾ ਜਹ ਨਿਰਮਲ ਪੁਰਖ ਪੁਰਖ ਪਤ ਹੋਤਾ ਤਹ ਬਿਨ ਮੈਲ ਕਹੋ ਕਿਆ ਧੋਤਾ ਜਹ ਨਿਰੰਜਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਬਾਨ ਤਹ ਕੌਣ ਕੌਮਾਨ ਕੌਣ ਅਭਿਮਾਨ ਜਹ ਸਰੂਪ ਕੇਵਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਤਹ ਛਲ ਸ਼ਿਦਰ ਲਗਤ ਕਹੋ ਕੀਸ ਜਹ ਜੋਤ ਸਰੂਪੀ ਜੋਤ ਸੰਗ ਸਮਾਵੈ ਤਹ ਕਿਸ ਹੈ ਭੂਖ ਕਵਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕਾ ਨਹੇ ਸੁਮਾਰ ਜਬ ਆਪਣੀ ਸੁਭਾ ਆਪਣ ਸੰਗ ਬਨਾਈ ਤਬ ਕਵਨ ਮਾਏ ਬਾਪ ਮਿੱਤਰ ਸੁਧ ਪਾਈ ਜੈ ਸਰਬ ਕਲਾ ਆਪੇ ਪ੍ਰਬੀਨ ਤਹ ਵੇਦਕ ਤੇਵ ਕਹਾ ਕੂਚੀਨ ਜਬ ਆਪਣ ਆਪ ਉਰ ਧਾਰੈ ਤਵ ਸਗਨ ਆਪ ਸਗਨ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰੈ ਜਹ ਆਪਣ ਊਚ ਆਪਣ ਆਪ ਨੇਰਾ ਤਹ ਕੌਣ ਠਾਕੁਰ ਕੌਣ ਕਹੀਐ ਚੇਰਾ ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਰਹੇ ਬਿਸਮਾਦ ਨਾਨਕ ਆਪਣੀ ਗਤ ਜਨ ਹੋ ਆਪ ਜਹ ਅਸ਼ਲ ਅਸ਼ੇਦ ਅਭੇਦ ਸਮਾਇਆ ਊਹਾਂ ਕਿਸੈ ਵਿਆਪਤ ਮਾਇਆ ਆਪਸ ਕੋ ਆਪੇ ਆਦੇਸ ਤੇ ਹੋ ਗੁਣ ਕਾ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਜਹ ਏਕ ਭਗਵੰਤਾ ਤਹ ਕੌਣ ਅਚਿੰਤ ਕਿਸ ਲਾਗੈ ਚਿੰਤਾ ਜਹ ਆਪਣ ਆਪ ਪਤੀਆਰਾ ਤਹ ਕੌਣ ਕਥੈ ਕੌਣ ਸੁਣਨੇ ਹਾਰਾ ਬਹੁ ਬੇਅੰਤ ਊਚ ਤੇ ਊਚਾ ਨਾਨਕ ਆਪਸ ਕੋ ਆਪੇ ਪਹੁਚਾ ਜਹ ਆਪ ਰਚਿਉ ਪ੍ਰਪੰਚ ਆਕਾਰ ਤਿਹੋ ਗੁਣ ਮੈਂ ਕੀਨੋ ਬਿਸਥਾਰ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਤੈ ਭਈ ਕਹਾਵਤ ਕੋ ਨਰਕ ਕੋ ਸੁਰਗ ਬੰਸ਼ਾਵਤ ਆਲ ਜਾਲ ਮਾਇਆ ਜੰਜਾਲ ਹਉਮੈ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪਹਿ ਪਹਾਰ
दुख सुख मान अपमान अनक प्रकार की उपख्यान अपन खेल आप कर देख है खेल संकोच तो नानक एक है। जह अवगत भगत तह आप जह पसरे पसार संत प्रताप दोहु पाक का पे तनी उनकी शोभा उनहु बनी आपे कौतुक करे आनंद जोज आपे रास भोगन निरे जोग जिस भावे तिस अपन ना इलावै जिस भावे तिस खेल खिलावै बेशुमार अथा अगणत अतुलै ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै श्लोक जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तनहार नानक एको पसरिया दूजा कह दृष्टार अष्टपति आप कथै आप सुनने हार आपे एको आप बिसथार जात सुभावै तां सृष्टि उपाए आपने पाणे लै सुमाए तुम ते भिन्नो नहीं किश होए आपन सूत सब जगत परोए जाको प्रभ जीओ आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तत का बेता नानक सगल सृष्ट का जेता जी जंत्र सबता कै हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ जिस राखै तिस कोय ना मारै सो मुआ जिस मनहु बिसारै तिस ताज अवर कह को जाए सब सिर एक निरंजन राय जी की जुगत जाकै सब हाथ अंतर बाहर जानो साथ गुण निधान बेअंत अपार नानक दास सदा बलहार पूरन पूर रहे दयाल सब ऊपर होवत कृपाल अपने कर्तव जाने आप अंतर जामे रहे ओ व्याप प्रत पाल जीअन बहु भांत जो जो रचियो सुत सहत आत जिस पावै तिस लय मिलाए भगत करै हर के गुण गाए मन अंतर विश्वास कर मानिया करन हार नानक एक जानिया जन लागा हर एक नाए तिसकी आसना ब्रथी जाए सेवक कौ सेवा बनाई हुकम बूझ परम पद पाई इस ते ऊपर नहीं विचार जापै मन बसया निरंकार बंधन तोर पए निरवैर आन दिन पूजह गुर के पैर एह लोक सुखिए पर लोक सुहेले नानक हर प्रभु आपे मिले साध संग मेल करहो आनंद गुण गावह प्रभु परमानंद राम नाम तत करो विचार दुर्लभ दे का करहो उधार अमृत बचन हर के गुण गाओ प्राण तरन का एह सुआओ आठ पहर प्रभ पेखो नेरा मिटे अज्ञान बिन से अंधेरा सुन उपदेश हिरदय बसावो मन इच्छे नानक फल पावो हलत पलत दोए लेहु सवार राम नाम अंतर उरतार पूरे गुर की पूरी दीखिया जिस मन बसाए तिस साच परीखिया मन तन नाम जप हो लिवलाए दुख दर्द मन ते पहो जाए सच व्यापार करो व्यापारी दरगह निभाए खेप तुम्हारी एका टेक रखो मन माहे नानक बहुर ना आवै जाहे तिस ते दूर कहां को जाए उबरै रखन हर ते आए निरपाओ जपै सगल पाओ मिटै प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै जिस प्रभ राखै तिस नाही दुख नाम जपत मन होवत सुख चिंता जाए मिटै अहंकार तिस जन कौ कोई न पहुचिन हार सर ऊपर ठाडा गुरसूरा नानक ताके कारज पूरा मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट दर्शन पेखत उधरत श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप धन सेवा सेवक प्रवान अंतर जामी पुरख प्रधान जिस मन बसै सुहोत निहाल ताकै निकट न आवत काल अमर पहै अमरा पद पाया साध संग नानक हर तिहाया सलोक ज्ञान अंजन गुरदिया अज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन प्रगास अष्टपदी संत संग अंतर प्रभ डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समिगरी एकस कट माहे अनक रंग नाना दृष्टाहे नौ निद अमृत प्रभ का नाम देही मैं इसका विश्राम सुन समाद अनहत तह नाद कहन ना जाई अचरज बिस्माद तिन देखिया जिसे आप दिखाए नानक तिस जन सो जी पाए सो अंतर सो बाहर अनंत घट घट ब्याप रहया भगवंत तरन माहे आकाश पयाल सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल बान तिन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म पौन पणि बैसंत्र माहे चार कुंड दह दिसे समाहे
तिस ते पिन नहीं को ठाओ, गुरप्रसाद नानक सुख पाओ। वेद पुराण सिमरत मैं देख, ससिय सूर नखियत्र मैं एक। बाणी प्रभ की सबको बोले, आप अडोल न कबहु डोलै। सर्ब कलाकार खेल खेल, मोल ना पाइय गुणे अमोल। सर्ब ज्योत मैं जाकी ज्योत, धार रहो स्वामी ओत पोत। गुर प्रसाद भरम का नास, नानक तिन मैं एहो बिसास। संत जना का पेखन सब ब्रह्म, संत जना कै हृदय सब धर्म। संत जना सुने शुभ बचन, सर्ब व्यापी राम संग रचन। जिन जाता तिस किए रहत, सत बचन साधु सब कहत। जो जो होए सोई सुख मानै, करण करावन हार प्रभ जानै। अंतर बसे बाहर पियो ही, नानक दर्शन देख सब मोही। आप सत किया सब सत, तिस प्रभ ते सगली उत्पत। तिस पहवै ता करे विस्थार, तिस पहवै ता एकंकार। अनक कला लखी नह जाए, जिस पहवै तिस लय मिलाए। कवन निकट कवन कहिए दूर, आपे आप आप भरपूर। अंतरगत जिसे आप जनाए, नानक तिस जन आप बुझाए। सर्वभूत आप वरतारा, सर्व नयन आप पेखनहारा। सगल समग्री जाका तना, आपन जस आप ही सुना। आपन जान एक खेल बनाया, आज्ञाकारी की नी माया। सब कह मध अलिप तो रह, जो कुछ कहना सो आपे का है। आग्या आवे आग्या जाए, नानक जा पावे तन लय समाए। इस ते होए सुना ही बुरा, ऊरै कहो किने कश करा। आप भला करतूत आतनी की, आपे जाने अपने जी की। आप साच तारी सब साच, ओत पोत आपन संग राच। ताकि गत मित कही न जाए, दूसर होए तां सोजी पाए। तिसका किया सब प्रवान, गुर प्रसाद नानक एहो जान। जो जाने तिस सदा सुख होए, आप मिलाए लए प्रभ सोए। ओह धनवंत कुलवंत पतेवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत। धन धन धन जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया। जन आवन का इह सुआउ, जन कै संग चित आवै नाउ। आप मुकत मुकत करै संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। सलोक पूरा प्रभ आराध्या, पूरा जाका नाउ। नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ। अष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख। सास सास सिमरु गोबिंद, मन अंतर की उतरै चिंद। आस अनित त्यागहु तरंग, संत जना की धूर मन मंग। आप छोड़ बेनती करहो, साध संग अग्न सागर तरहो। हर तन के पर लेहो भंडार, नानक गुर पूरे नमस्कार। खेम कुशल सहज आनंद, साध संग भाज परमानंद। नरक निवार उधारो जियो, गुण गोबिंद अमृत रस पियो। चित चित वह नारायण एक, एक रूप जाके रंग अनेक। गोपाल दमोदर दीन दयाल, दुख भंजन पूर्ण कृपाल। सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का यह आधार। उत्तम श्लोक साध के बचन, अमुलीक लाल एह रतन। सुनत कुमावत होत उधार, आप तरह लोकह निसतार। सफल जीवन सफलता का संग, जा कै मन लागा हर रंग। जय जय शब्द अनाहद वाजय, सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजय। प्रगटे गोपाल महात कै माथे, नानक उदरे तिन कै साथे। सरण जोग सुन सरणी आए, कर कृपा प्रभ आप मिलाए। मिट गए बैर पए सब रेन, अमृत नाम साध संग लैन। सुप्रसन्न पए गुरुदेव, पूरन होई सेवक की सेव। आल जंजाल बिकार ते रहते, राम नाम सुन रसना कहते। कर प्रसाद दया प्रभ तारी, नानक निबही खेप हमारी। प्रभ की उस्तत करहु संत मीत, साव दहान एकाग्र चीत। सुख मने सहज गोबिंद गुण नाम, जिस मन बसै सोहो तिने धान। सर्ब इच्छा ताकि पूरन होए, प्रधान पुरख प्रगट सब लोए। सब ते उच पाए अस्थान, बहुर न हो गया आवन जान।
ਹਰ ਤਨ ਖਾਟ ਚਲੈ ਜਨ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਜਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਖੇਮ ਸ਼ਾਂਤ ਰਿਧ ਨਾਵ ਨਿਧ, ਬੁੱਧ ਗਿਆਨ ਸਰਬ ਤਹਿ ਸਿੱਧ, ਵਿਦਿਆ ਤਪ ਜੋਗ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਨ, ਗਿਆਨ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਉਤਮ ਇਸਨਾਨ, ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਸਭ ਕੈ ਮੱਧ ਸਗਲ ਤੇ ਉਦਾਸ, ਸੁੰਦਰ ਚਤੁਰ ਤਤ ਕਾ ਬੇਤਾ, ਸਮਦਰਸੀ ਏਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿਤਾ, ਇਹ ਫਲ ਤਿਸ ਜਨ ਕੈ ਮੁਖ ਪਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਚਨ ਮਨ ਸੁਨੇ, ਇਹੋ ਨਿਧਾਨ ਜਪੈ ਮਨ ਕੋਏ, ਸਭ ਜੁਗ ਮੈਂ ਤਾਕੀ ਗਤ ਹੋਏ, ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਧੁਨ ਬਾਣੀ ਸਿਮਰਤ ਸਾਹ।

जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक हुसी पी सच सोचै सोच न होवई जे सोची लखवार चुपै चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार सह सुसियाण पा लख हो हिता इक न चलै नाल

न कहया जाई। हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वडियाई, हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है। इक ना हुक्मी बख्शीस इक हुक्मी सदा पवाई है। हुक्मै अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोई,

पूरक कथना कथिन आवै तोट काथ कथ कथी कोटी कोट कोट देता दे लै दे थक पाही जुगा जुगंतर खाही खाही हुक्मे हुक्म चलाए राहु नानक विकसै वे परवाहु साचा साहिब साच नाए पाख्या पाउ अपार आखै मंगह दे दे दात करे दातार फेर के अगै रखिए।

सोई आपी आप निरंजन सोई जिन सेव्या तिन पाया मानु नानक गावी है गुणी निदान गावी है सुनी है मन रखी है पाऊ दुख पर हर सुख कर ले जाए गुरमुख नादम गुरमुख वेदम गुरमुख रहा समाई गुर ईसर गुर गोरख वर्मा गुर पार्वती माई जे हो जाना अखा नाही कहना कथन न जाई गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई तीरथ नावा जित पावा विन पाने के नाही करी जिती सिर ठो पाई विका विन कर्मा के मिले लई मत विच रतन जवाहर माणिक जेक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई

मनसोर जोर न सुरती ज्ञान विचार जोर न जुगती छुट्टै संसार जिस हथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच न कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी हुए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवा नदरी करम पवै निशान कच पकाई उथे पाए नानक गया जापै जाए धर्म कांड का एहो धर्म ज्ञान कांड काया कोह करम केते पवन पाणी वै संतर केते कान महेश केते बर में काड़त घड़िय है रूप रंग के वेश केतिया कर्म भूमि मेर केते केते धूप देश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश केते देव दान मुन केते केते रतन समुंद केतिया खाणी केतिया बाणी केते पाथ नरिंद केतिया सुरती सेव केते नानक अंतरात ज्ञान खंड मैं ज्ञान प्रचंड तिथे नाद विनोद कूड आनंद शर्म खंड की बाणी रूप तिथे काढ़त घड़िए बहुत अनूप ताकि अगला कथिया न जाहि जी को कह पिछे पछताए तिथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथे घड़िए सुरं सिद्धा की सुध कर्म कांड की बाणी जोर तिथे हो न कोई होर तिथे जोध महाबल सूर तिन मह राम रहया भरपूर तिथे सीतो सीता महमा माए ताके रूप न कथने जाहे नाहे मरे न टागे जाहे जिन कह राम वसै मन माए तिथे भगत वसै के लोक करह अनंत सच्चा मन सोए सच खंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल तिथे खंड मंडल वर भंड जे को कथै तंत अनंत तिथे लो आकार जिव जे हुक्म तिवै तिवकार वेखै विकसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार जत पहारा धीर सुनियार हरण मत वेद हथियार पाओ खलागन तपताओ भांडा पाओ अमृत तटाल घड़ी है शब्द सची टकसाल जिनको नदर कर्म तिनकार नानक नदरी नदर निहाल सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात दुए दाई दाया खेले सगल जगत चंगे आईया बुरे आईया वाचे धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गए मशक्कत काल नानक ते मुख उजले

कृतारं नमो सर्वतन्दे नमो सत्वन्दे नमस्तं निरसाके नमस्तं निर्वाके नमस्तं रहिमे नमस्तं करिमे नमस्तं अनन्ते नमस्तं महन्ते नमस्तस्तरागे नमस्तं सुहागे नमो सर्वशोकं नमो सर्वपोकं नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो जोगजोगे नमो भोगभोगे नमो सर्वदयाले नमो सर्वपाले चाचरी चंद्वा प्रसाद अरूप है अनूप है अजू है अपू है अलेख है अपेख है अनाम है अकाम है अदेह है अपेह है अजीत है अपीत है त्रिमान है निदान है त्रिवर्ग है असर्ग है अनिल है अनाद है अजय है अजाद है अजन्म है अवर्ण है अपूत है अपर्ण है अगंज है अपांज है अचूज है अचंज है अमीक है रफीक है

निदान है, अनेक हैं फिर एक हैं, भुजंग प्रच्छंद नमो सर्वमान्य समस्ती निदाने, नमो देव देवे अपेक्षी अपेवे, नमो काल काले, नमो सर्व पाले, नमो सर्व गौणे, नमो सर्व पौणे, अनंगी अनाथे नरसंगी प्रमाते, नमो पान पाने, नमो मान माने, नमो चंद्र चंद्रे, नमो पान पाने, नमो गीत गीते, नमो तान ताने, नमो नृत नृते, नमो नाद नादे, नमो पान पाने, नमो बाद बादे, अनंगी अनामे समस्ती स्वरूपे, परपंगी परमाते समस्ती विभूते, कलंकंग विनाने कलंकी स्वरूपे, नमो राज राजेश्वरं परम रूपे, नमो जुग जुगेश्वरं परम सिद्धे, नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे, नमो शस्त्रपाणे, नमो वस्त्रमाणे, नमो परम ज्ञाता, नमो लोकमाता, अपेक्षी अपरमी अपुगी अपुगते, नमो जुग जुगेश्वरं परम जुगते, नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे, नमो प्रेत अप्रे देवे सुधर्मे, नमो रोग हरता, नमो राग रूपे, नमो साह सांग, नमो पूप पूपे, नमो दान दाने, नमो मान माने, नमो रोग रोगे, नमो सुंग स्नानं, नमो मंत्र मंत्रं, नमो जंत्र जंत्रं, नमो इष्ट इष्टे, नमो तंत्र तंत्रं, सदा सचिदानंद सर्वं परनासी, अनुपे अरूपे समस्तुल निवासी, सदा सिद्धदा बुद्धदा बृहदकर्ता, अदो ऊर्ध अर्धं गगंगो गहर्ता, परम परम परमेश्वरं प्रोजपालं, सदा सर्वदा सिद्धाता दयालं, अचेदी अपेदी अनामंग कामं, समस्तो पराजी समस्तस्ततामं, तेरा जोचा चरी चंद, जले हैं तले हैं, अपीत हैं अपेय हैं, प्रभु हैं अजू हैं, अदेश हैं अपेश हैं, भुजंग प्रयाचंद, अगाते अबाते अनंदी स्वरूपे, नमो सर्वमान्य समस्ती निदाने, नमस्तुंग निर्नाते, नमस्तुंग परमाते, नमस्तुंगा गंजे, नमस्तुंगा पंजे, नमस्तुंगा काले, नमस्तुंगा पाले, नमो सर्वदेशे, नमो सर्वपेशे, नमो राजराजे, नमो साहसाजे, नमो साहसाहे, नमो महामाहे, नमो गीत गीते, नमो प्रीत प्रीते, नमो रोख रोके, नमो शोक शोके, नमो सर्वरोगे, नमो सर्वभोगे, नमो सर्वजीतं, नमो सर्वपीतं, नमो सर्वज्ञानं, नमो परमतानं, नमो सर्वमंत्रं, नमो सर्वजंत्रं, नमो सर्वदृश्यं, नमो सर्वकृष्णं, नमो सर्वरंगे त्रिपंगी अनंगे, नमो जीव जीवं, नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिजे, कृपालं स्वरूपे कुकर्मं परनासी, सदा सर्वदा ऋतसिद्धं निवासी, चरपट चंत्वा प्रसाद, अमृत कर्मे अमृत धर्मे, अखल जोगे अचल भोगे, अचल राजे अटल साजे, अखल धर्मंग अलग कर्मंग, सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने, सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग, सर्वंग भुगता सर्वंग जुगता, सर्वंग देवंग सर्वंग पेवंग, सर्वंग काले सर्वंग पाले, रूवाल चंत्वा प्रसाद, आद रूप अनाद मूरत जौन पुरकपाद, सर्वान् त्रिमान् देव पेवाद उदार, सर्वपालक सर्वकालक सर्वकोपन काल, जतर तत्र विराज ही अवतूत रूप रिसाल, नाम थामना जा जाक रूप रंग नरेक, आद प्रकुदार मूरत जौन आदस एक, देश और न पेश जाक रूप रेख न राग, जतर तत्र दिशा विशा फैल अनुराग, नाम काम बहीन पेख ताम न जाहे, सर्वमान सर्वत्र मान दयमान तथा एक मूर्त अनेक, दर्शन कीन रूप अनेक, खेल खेल अखिल खेल अनंत को फिरेक, दे पेव न जानी जे वेद और कतेब, रूप रंग न जात पासो जानी के जेब, तात मात न जात जाकर जन्म मरण बहीन, चक्र बकर फिरै चतर चक मानी पुरतीन, लोक चौदह के विकै जग जापी जे जाप, आद देवनाद मूरत थाप्यो सबै जिथा, परम रूप नीत मूरत पूर्ण पुरख अपार, सर्विश्वरच्यो सुयं भव गण भंजन हार, कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख देश, धर्म धाम सु परम रहत अभूत लख अभेश, अंग राग न रंग जाकै जात पात न नाम, गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुख दाय काम, आप रूप अमीक अनुस्तते पुरख अवतूत, गर्भ गंजन सर भंजन आद रूप असूत, अंगहीन भंग नात्मेक पुरख पार, सर्वलायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार, सर्वगंता सर्वहंता सर्व ते अनभेद,
सर्वशास्त्र न जाने जे रूप रंग रेख परम वेद पुराण जा कह नेत भागत नित कोट सिमृत प्राण शास्त्र नया वैभव चित मद भार चंतव प्रसाद गुणगन उदार महिमा अपार आसन अपांग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश निश्चिन अनाश आजान बाहु साहन साहू

कालान काल अनपूत अंग आभा अपंग गत मित अपार गुणगन उदार गुणगन प्रणाम निरपय निकाम अतदुत प्रचंड मितगत अखंड आलस्य कर्म आदृश्य धर्म।

चतुर चक्र करता चतुर चक्र हरता चतुर चक्र दानी चतुर चक्र जाने चतुर चक्र वर्ती चतुर चक्र भरती चतुर चक्र पाले चतुर चक्र काले चतुर चक्र पासे चतुर चक्र वासे चतुर चक्र मान्य चतुर चक्र दान्य चाचरी छंद चाचरी चांदना सत्रह न मित्र न परमंग न पित्र न कर्मंग न काय अजन्मंग अजाय न चित्र न मित्र परे है पवित्र प्रतिशय अदिशय अदृश्य कृश्य भगवती छंद प्रसाद कथते किया छिज दिश किया भिज भिष किया गंज कर मैं किया भंज पर मैं किया भिज लुक किया दित सुख है कि अवतूत वर्ण के बेभूत कर्ण के राजंग प्रभा है कि धर्मंग तुझा है कि अशोक वर्ण कि सर्वा अपर्ण कि जगतंग कृति है कि छत्रंग छत्री है कि वर्मंग स्वरूप है कि अनुभव अनुप है कि आदिदेव है कि आपेव है कि चित्रंग बहीन के कै अधीन के रोजी रजा कह रही मैं रिहा कह के पाक बे वह के गय बुल गय वह के फुल गुना है कि सहानुसा है के कारण कुनिंद है कि रोजी देहांद है कि राजक रही मैं कि कर्मंग करी मैं कि सर्वंग कली है कि सर्वंग दली है कि सर्वत्र मान्य है कि सर्वत्र दान्य है कि सर्वत्र गौण है कि सर्वत्र पौण है कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र पेश है कि सर्वत्र राज्य है कि सर्वत्र साज्य है कि सर्वत्र दीन है कि सर्वत्र लीन है कि सर्वत्र जाहु कि सर्वत्र पाहु कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र पेश है कि सर्वत्र काल है कि सर्वत्र पाल है कि सर्वत्र हंता कि सर्वत्र गंता कि सर्वत्र पेखी कि सर्वत्र पेखी कि सर्वत्र काज्य है कि सर्वत्र राज्य है कि सर्वत्र सुख है कि सर्वत्र भूख है कि सर्वत्र त्राण है कि सर्वत्र प्राण है कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र पेश है कि सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान्य है कि सर्वत्र जाप्य है कि सर्वत्र थाप्य है कि सर्वत्र पान है कि सर्वत्र मान है कि सर्वत्र इंद्र है कि सर्वत्र चंद्र है कि सर्वंग कली में कि परमंग फही में कि आकल अलाम है कि साहिब कलाम है कि हुसनल वजू है तो मामूल रजू है हमेशल सलाम है सलीकत मुदाम है गनीमुल शिकस्त है गरीबुल परस्त है बेलंदुल मकान है जमीनुल जमान है तमीजुल तमाम है रुजुअल निदान है हरीफुल अजीम में रजाई की यकीन है अनेकल तरंग है अपेद है अपंग है अजीजुल निवाज है गनीमुल की राज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रभा है सुजुक्त सुधा है सदैव स्वरूप है अपेदी अनूप है समस्तोपराज है सदा सर्वसाज है समस्तुल सलाम है सदैवल अकाम है निर्वाद स्वरूप है अगाध है अनूप है ओंगाद रूपे अनाथ स्वरूप है अनंगी अनाम्य त्रिपंगी त्रिकाम्य त्रिवर्गंग त्रिवादे अगंजे अगाधे शुभंग सर्वभागे सुसर्वा अनुरागे त्रिपुगत स्वरूप है अचिज है अचूत है कि नरकंग प्रणास है प्रतुल प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैव सदा है विभुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है निरुक्त सदा है विभुक्त प्रभा है अनुक्त स्वरूप है।

अगा है, असंभ है, अगम्भ है, अनिल है, अनाद है, अनित्य है, सुनित्य है, अजात है, अजाद है, चर प्रचंत प्रसाद, सर्वंग हंता, सर्वंग गंता, सर्वंग ख्याता, सर्वंग ज्ञाता, सर्वंग हर्ता, सर्वंग कर्ता, सर्वंग प्राणंग, सर्वंग त्राणंग, सर्वंग कर्मंग, सर्वंग तर्मंग, सर्वंग जुगता, सर्वंग मुक्ता,

0: परमाते सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे
1: परमात्म परमाते सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्वाध विभूते अनंगी अनामी त्रिपंगी त्रिकामे नृपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न ताते न माते न जाते न पाते नृसाकं सरी कह अमितो अमी कह सदैव प्रभा अजय है अजा है। भगवती चंद्र प्रसाद के जाहर जहूर हैं के हाजर हजूर हैं हमिसल सलाम है समस्तुल कलाम है के साहिब दिमाग है के हुसनल चिराग है के कामल करीम है के राजक रहीम है के रोजी ध्यानद है के राजक रहिंद है करीमुल कमाल है के हुसनल जमाल है गनीमुल खिराज है गरीबुल निवाज है हरिफुल सिकन है हिरासल फिकन है कलंकं प्रणाश है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजायक रहीम है समस्तुल जुबा है के साहिब किरा है के नरकं प्रणाश है बहस्तुल निवास है के सर्वल गवान है हमेशुल रवान है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परम परमीश है समस्तुल अदीश है अदेशल अलेख है हमेशुल अपेख है जमीनुल जमा है अमिकुल इमा है करीमुल कमाल है के जुरत जमाल है के अचलंग प्रकाश है के मितो सुभाष है के अजब स्वरूप है के मितो विभूत है के मितो पसा है के आत्म प्रभा है के अचलंग अनंग है के मितो अपंग है मत पार छंद प्रसाद मुन मन प्रणाम गुनगन मुदाम अरबर अगंजु हर नर परपंजु अनगन प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बरनर अमंड अनपवनास मुन मन प्रकाश गुनगन प्रणाम जल तल मुदाम अंचिज अंग आसन अपंग उपमा पार गत मितुदार जल तल अमंड दिस्विस अपंड जल तल महंत दिस्विस बेअंत आन पावनास त्रेतर तुरास आ जान बाहु एक कैशुदाहु ओंकाराद कथनी अनाद थल खंड खेयाल गुरुबर अकाल कर कर प्रणाम चिचरण नाम अनचिज गात आजिज ना बात अनचंज गात अनरंज बात अनटुट भंडार अनडट अपार आडिट धर्म मत ठीठ कर्म अनब्रन अनंत दाता महंत हर भूल मना छंत प्रसाद करुणा लय है कालय है कलकंडन है मैं मंडन है जगतीश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्वभारण है त्रित के तरण है जग के करण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वंग पर है सर्वंकर है सर्वपाश्य है सर्वनाश्य है करुणा कर है विश्वंपर है सर्वेश्वर है जगतीश्वर है ब्रह्मंड से खल खंड से परते पर हैं करुणा करें जपा जप है तपा तप है अकृता कृत्य मृता मृत्य मृता मृत्य करुणा कृत्य कृता कृत्य धरणी त्रित है अमितेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत्य मृता मृत्य जपा कृत्य मृता मृत्य निर्णायक है खलकायक है विश्वंपर है कुरुणालय है नृपनायक है सर्पायक है पवंजन है अर्गंजन है रिपतापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है परमात्म है कर्ता कर है हरता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस के जस है भुजंग प्रया छंद नमो सूर्य सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज संताम संसांत रूपे नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पूज पूजे नमो पान पाने

सेन नु बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अना मित्र भंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अचरी चंद अजय अलय अपह अभय अपू अजू अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपक अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगाह अटाह अनाथि परमाथि अजो नियमो नि नरागे नरंगे नरूपे नरेखे अकर्मंग परमंग अगंजे अलेखे भुजंग प्रयाचंद नमस्तुल परनामे समस्तुल परनासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे निरकामंग विभूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग परनासी सुधर्मंग विभूते सदा सचदानंद सत्रंग परनासी करिमुल्क निंदा समस्तुल निवासी अजाय विभूते गजाय गनिमे हरियंग करियंग करिमुल रहिमे चतुर चक्रवर्ती चतुर चक्र भुगते स्वयं पव सुभंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग परनासी दयालंग स्वरूपे सदायंग संग

भी जग श्री भगवान को भेद न पायो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं। कबियो बाज बेनती चौपाई, हमरे करो हाथ दै रक्षा। पूर्ण होए चित की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा। अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सबै तुम काबो। आप हाथ दै मोहे बचावो, सुखी बसै मोरो परिवारा। सेवक सिख सबै करतारा, मूर अच्छा निज कर दै करिए। सबै रण कुआ संगरिया, पूर्ण होए हमारी आशा। तुर भजन की रह प्यासा, तुम्हें चाड़ कोई अवर ना त्याऊं। जो पर चाऊं सो तुम ते पाऊं, सेवक सिख हमारी तारी है। चुन चुन सत्र हमारे मारिया, आप हाथ दे मुझे परिय। मरण काल का त्रास निवरिय, पूजो सदा हमारे पच्छा। श्री आसत जो करे हो रक्षा, राख लिहु मुराखन हारे। साहब संसहाय प्यारे, दीन बंदुष्टन के हंता। तुम हो पुरी चतुर दशकंता, काल पाए ब्रह्मा बाप तरा। काल पाए शिव जू अवतरा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा। सकल काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी शिव की यो। वेद राज ब्रह्मा द्युतियो, जवन काल सब लोक सुवारा। नमस्कार है ताहे हमारा, जवन काल सब जगत बनायो। देव दै जचन बजायो, आद अंत के अवतारा। सोई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार तिस ही को हमारी। सकल प्रजा जिने आप सुवारी, शिवकन को सब गुण सुख दियो। सत्रन को पल मुगद कियो, घट घट के अंतर की जानत। भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचर स्थूला। सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी। सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाने। घट घट के पट पट की जाने, जब उदकर्क करा करतारा। प्रजा तर तब देह अपारा, जब आकर्क करत हो कब हूँ। तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ, जे ते बदन सुट सब तार है। आप अपनी बूझ उचार है, तुम सब ही ते रहत निरालम। जानत वेद भेद अर आलम, निरंकार निर्विकार निर्लंब। आद नील अनाद असंभु, ताका मूढ़ उचारत भेदा। जाको भेव न पावत वेदा, ताको कर पाहन अनुमानत। महामूढ़ कछ भेद न जानत, महादेव को कहत सदा सेव। निरंकार का चीनत न भेव, आप अपनी बुद्ध है जीती। वर्णत भिन्न भिन्न तुह तेती, तुमरा लखा न जाय पसारा। के विसुजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप स्वरूपा। रंग भयो राव कै भूपा, अंड जेर सेत जकीनी। उत भुज खान बहुर रच दीनी, कहूं फूल राजा हवै बैठा। कहूं सिमट भयो शंकर कैठा, सिगरी सृष्ट दिखाए अचम भव। आद युगा स्वरूप स्वयं पव, रक्षा मेरी तुम करो। सिख उबार सिख संगरो, दुष्ट जिते उठो तुत पाता। सकल मलेश करो रन काता, जे अस तुझ तब सरनी परे। तिनके दुष्ट दुख तहवै मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे। तिनके तुम संकट सब टारे, जो कल को एक बार ते है। ताके काल निकट न है, रक्षा होए ताहिं शुभ काला। दुष्ट अरिष्टरै तत्काला, कृपा दृष्टन जाहे निहरे हो। ताकि ताप तनक मैं हरे हो, रिद्ध सिद्ध कर्म सब हुई। दुष्ट चाचव सकै न कोई, एक बार जिन तुम्हें सुबारा। काल फास ते ताए उबारा, जिन नर नाम तिहारू का। आधार दुष्ट दुख तेरा, खड़के तुम्हें शरण तिहारी। आप हाथ दै लिहु उबारी, सर्व ठाउर मोह सहाई। दुष्ट दुख ते लिहु बचाई, कृपा करी हम पर जग माता। ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता, किल विक्षकल देह को हरता। दुष्ट दोखिन को छय करता, श्री अस्तुजा भय दयाला। पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन बांचत फल पावै सोई। दुख न तिसै व्यापत कोई अड़िल, सुने गुंग जो याहि सुरस ना पावई। सुने मूढ़ चित लाए चतुरताया वई, दुख दर्द भाव निकट न तिन नर के रह। हो जो या की एक बार, चौपाई को कह चौपाई। संबत सत्रह सहस पनी जय, अर्ध सहस हुन तीन कही जय। पाद्र सुदेष्टमी रववारा, तीर्थ तद्रव ग्रंथ सुधारा। सोइया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते कुआंक तरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कह मत एक न मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सब भेद, कह अमेक न जान्यो।
श्री स्पान कृपा तुम्हारी करमै न करू सब तो

जन सब तुदु पाइक विक प्रसन आया, लभ लुभ अहंकार चुका सतगुरु भला पाया। कह नानक जिसनु आप तुठा तिन अमृत गुर ते पाया। भगता की चाल निराली, चाला निराली भगता कीरी, बिक मार्ग चलना लभ लुभ अहंकार ता तृष्णा बहुत नाही बोलना। कन्हो तिखे वालो निकेत मार्ग जाना, गुरु प्रसादी जिनी आप तुझे हर वासना सुमानी। कह नानक चाल भगता जुगो जुग निराली, ज्यो तू चलाही तिव चलै स्वामी, होर क्या जाना गुण तेरे। जिव तू चलाहे तिवै चलै, जिन्ना मार्ग पावे कर कृपा, जिन्ना मिलाहे से हर हर सदा त्यावे। जिसनु कथा सुनाहे अपनी से गुरुद्वारे सुख पावे। कह नानक सच्चे साहिब ज्यो पावै तिवै चलावे, सोहेला सब सुहावा शब्दो सुहावा सदा सोहेला। सतगुरु सुनाया ओ दिन कै मनु सिया, जिन तुरु लिखिया आया। एक फिरै कनेरे करै गल्लां, गली किने न पाया। कह नानक सब सोहेला सतगुरु सुनाया, पवित्र होए से जना जिनी हर ध्याया। हर ध्याया पवित्र होए गुरमुख जिनी ध्याया, पवित्र माता पिता कुटुंब सहसों पवित्र संगत सुभाइया। कह दे पवित्र सुन दे पवित्र से।

रोग लगा मरण मनोविसारिया विद्या मैं नाम उत्तम सो सुने नाही फिर है ज्यो बेता लिया कह नान जिन सत जिया कूड़े लागे तिने जन्म जुए हारिया जियो निर्मल बारू निर्मल बारू ता निर्मल जियो निर्मल सतगुर ते करणी कमाणी कूड़ के सोए पहुंचे नाही मन सा सत समानी जन्म रतन जिन खटिया भले सेवन जारे कह नानक जिन मन निर्मल सदा रह है गुरु नाले जे को सिख गुरु सेती सन्मुख होवे ता सन्मुख सिख कोई जी हो रह गुरु नाले गुर के चरण हृदय त्याए अंतरात्मा समाले आप चढ़ सदा रह पर न गुर बिन वर न जाने कोए कह नानक सुनो संतोषो सिख सन्मुख होए जी को गुर ते वे मुख होवे बिन सतगुर मुक्त न पावे पावे मुक्त न होर ते कोई पुछो बवे किया जाए अनेक जूनी भरम आवे बिन सतगुरु मुक्त न पाए फिर मुक्त पाए लाख चरणी सतगुरु सब सुनाए कह नानक विचार देखो बिन सतगुरु मुक्त न पाए आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो गावो सच्ची बाणी बाणी ता गावो गुरु केरी बाणी है सिर बाणी जिन को नदर कर्म होवे हृदय तिना समाणी पीवो अमृत सदा रहो हरंग जप्यो सारंग पाणी कह नानक सदा गावे सच्ची बाणी सतगुरु बिना और कच्ची है बाणी बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजो और कच्ची बाणी कह दे कच्चे सुन दे कच्चे कच्चियां कवखाणी हर हर नित करै रसना कया कछु न जानी चित जिनका हिर लिया माया बोलन पैर वाणी कह नाम सतगुरु बाजो और कच्ची बाणी गुरु का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ शब्द रतन जित मन लागा इहो हुआ समाओ शब्द सेती मन मिलिया सच्चै लाया पाहु आपे हीरा रतन आपे जिसनु दे बुझाए कह नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ शिव सकता पुपाए कह करता आपे हुकुम वरताया वेखै गुरमुख सै बुझाए तोड़े बंधन होवै मुख शब्द मन वसाए गुरमुख जिसनु आप करे सो होवै तस्यों लिवलाए कह नानक आप करता आपे हुकुम बुझाए सिमर शास्त्र पुन पा विचार दे तत्तै सार न जानी तत्तै सार न जानी गुरु बाजो तत्तै सार न जानी ते गुणी संसार भ्रम सुता सुतिया रहन विहानी गुरु कृपा ते से जन जागे जिन हर मन वसिया बोलै अमृत बाणी कह नान सो तत् पाए जिसनु वंदन हर लिव लागै जागत रहन विहानी माता के उदर में प्रतपाल करे सो क्यों मनो विसारी है मनो क्यों विसारी है विड़दाता जगन में आहार पहुंचावे हो सुनो क्यों पोहे न सकी जिसनु अपने लिव लावे अपने लिव आपे लाए गुरमुख सदा संभाली है कह नानके विड़दाता सो क्यों मनु विसारी है जैसी अगन उदर मह तैसी बाहर माया माया गण सब इक्को जे ही करतै खेल रचाया जा तिस भाणा ता जमिया परिवार भला पाया लिव छुटकी लगी तृष्णा माया मर वरताया हि माया जितर विसरै मोह पजै भाउ दूजा लाया कह नान गुरु प्रसादी जिन्ना लिव लागी तिन विचे माया पाया हराप मुल कहे मुल न पाया जाए मुल न पाया जाए किसे विट हो रहे लोक विल लाए ऐसा सतगुरु जी मिले तिसनु सिर सोपिए विचो आप जाए जिसदा जीव तिस मिल रहे हर वसै मन आए हराप मुल कह भाग तिना के नानका जिन हर पल्लै पाए रास मेरी मन वणजारा रास मेरी मन वणजारा सतगुरु तेरा सजानी हर हर नित जपे हो जी हो ला कटे दिहाड़ी इहो धन तिना मिलिया जिन हर आपे भाणा कह नानक रस मेरी मन हुआ बनजारा ए रसना तू अनरस राच रही तेरी प्यास न जाए ओरत कितै जिचर हर रस पल्लै न पाए हर रस पाए पल्लै पीए हर रस पौड़ न तृष्णा लागे आए यो अरस करमी पाई है सतगुरु मिला जिसे आए कह नानक होर अनरस विसरे जार वसै मने आए हे शरीरा मेरे हर तुम मैं जोत रखी ता तू जग में आया हर जोत रखी तुद विचता तू जग में आया हरे आपे माता आपे पिता जिन जियो पाए जग दिखाया गुर प्रसादी बुझिया ता चलत हुआ चलत नदरी आया कह नानक सृष्ट का मूल रचिया जो तरा कीता तू जग में आया मन चाओ भया प्रभागम सुनिया हर मंगल गाओ सखी गृह मंदिर बने हर गाओ मंगल दिस सखिए सुख दुख न व्यापे गुर चरण लागे दिन सुभागे अपना फिर जापे अनहत बाणी गुर शब्द जानी हर नाम हर रस भोगो कह नानक प्रभा मिलिया करण कारण जोगो ए शरीरा मेरा इस जग में आए कह क्या तुद कर्म कमाया के कर्म कमाया तुद शरीरा

आया जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन न वसाया गुरु प्रसादी हर मन वसिया पूर्व लिखिया पाया तै नानक क्यों शरीर प्रवान हुआ जिन सतगुरु स्यों चित लाया ए नित्र हो मेरे हो हर तुम मैं जो तरी हर बिनवर न देखो कोई हर बिनवर न देखो कोई नदरी हर निहालिया यो वे संसार तुम देख दे हर का रूप है हर रूप नदरी आया गुरु प्रसादी बुझिया जावे कारिक है हर बिन वर्ण कोई कह नानक के नितरन से सतगुर मिले दिव दृष्ट होई हे श्रवण हो मेरे हो सच है सुन नैनो पठाए सच है सुन नैनो पठाए शरीर लाए सुनु सत बाणी जित सुनी मन तन हरिया हुआ रसना रस मानी सचल खविडानी ताकि गत कही न जाए कह नानक मृत ना सुनो पवित्र हो सच है सुन नैनो पठाए हर जियो गुफा अंदर रख कै वाजा पवन बजाया बजाया वाजा पाऊं नौ द्वारे प्रगट किए दसवां गुप्त रखाया गुरुद्वारे लाए भावन एक ना दसवां द्वार दिखाया तह नेक रूप नव नव निध तिष्टांत न जाई पाया कह नानक हर प्यार है जियो गुफा अंदर रख कै वाजा पवन बजाया यो साचा सोहिला साचै कर गावहू गाव ता सोहिला कर सच है जिथे सदा सच त्यावे सचो त्यावे जा तुद भावे गुरमुख जिना बुझावे यो सच

विनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाकुर।

जैत सरी महला पंजवां छंत कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक दर्शन प्यासी दिन सरात चितवों अन दिन नीत खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग मीत। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानियो साहिब सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन छत्र छाया हेठ जुड़ बैठी गुरु रूप साध संगत जी वडभागी हो जो अमृत वेले दे दीवाना दी निता प्रति वाहिगुरु की कृपा सदका हाजरी भरदे हो गुरु घर दीआं खुशियां प्राप्त करदे हो। सतगुरु जी ने कृपा कीती है अज भी सुभाग बख्शिश कीता है उदम बख्शिश कीता है अपने दर घर की हाजरी भरवाई है। सो सतगुरु जी का कोटान कोट शुक्र है। पावन दीवाना विच जुड़ बैठ के आप जिया ने अमृतमई बाणिया के पाठ सरवण किए हैं अरदास शामिल होए उपरंत अज के श्री मुख वाक बख्शिश जो सतगुरां ने किए हैं सरवण किए हैं। जैत सरी राग अंतर पंचम पातशाह जी का यह पावन शब्द चंत रूप विच है। सतगुरां दे पवित्र अंग 703 ते 4 उपर यह पावन शब्द दर्ज है सुभायमान है। गुरदेव जी ने ही बख्शिश मेहरामत की है कि जिन्हां जीव आत्मावान उस अकाल पुरख वाहगुरु के दर्शनां की तांग है जो ये लुचा रख दियां हन जीव आत्मावान कि वाहगुरु परमात्मा नाल मिलाप हो जाए वाहगुरु के दर घर विच असीं परवाने जाइए वो सदा वाहगुरु के दर्शनां की तांग रखते हैं पुकार करते हैं कि हे मालक अपने दर के घर के दर्शन दे कपाट खोल दे दरवाजे खोल दे तां जो तेरे दर घर के दर्शन हो जाण। असी तेरे दर ते बैठे हाँ दरमाते ठाडे दरबार तुझ बिन सुरत करै को मेरी तेरे तो बिना साडा कोई वाली वारस नहीं मददगार नहीं साडी कोई सहायता करन वाला नहीं दर्शन दीजै खोल किवार अपने किवाड़ खोल के सानू दर्शन दे अपने घर विच थां दे। ये अरदास बेनती पंचम पातशाह जी ने करनी सिखाई है। सतगुरु जी रहमत करन सभना नू तरों करो नाम दान गुरसिखी जीवन चढ़दी कला बख्शिश करके नवाजन जी। आओ हुण अमृत बाणी आसा की वार दे कीर्तन दा समा होया भाई रिशपाल सिंह जी अते उन्हां दा जत्था आप जी नू गुरबाणी कीर्तन नाल जोड़ेगा जी भुल्लां चुक्कां दी खिम

0: पग पिताण अपना किया कमाना अलमल खाई सिर छाई पाई मुरखंदे पत गई
1: ऋण ना वे किछ खाए ना पाई रह बीमारी मणि मसाणी अंदर जाने फिर पछता।

गुरुग्री निवाच अंतर जमी सतगुरु जी तन तन साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जग दी जोत हाजर हाजू गुरु कल जुग देव बोत निम्रता सहित बिनती सतगुरु जी आप जी दर हाजिर पर दिया बेअंत गुरु सिख माई पाई प्रभु आप जी दिपण सतगुरु जो बेअंत महा भेटा कर आप जी सार सिखी दान प्रोसा दान चन्ना कुना प्यार बख्शना खजाने पर पुरपने सो आओ गुरु प्यार साथ समझो कीर्तन दी निक सेवा प्रवान कनी हुई बुला चुका दिखिमा कनी आओ अगले प्रोग्राम कथा दे सरण करिए सत्कार योग पैसा भाई परमजीत सिंह जी उन्हों पासो अज दे श्री मुखाक्ति विचार गुर इतिहासिक इतिहास सरण करिए दासलो फतेह प्रवान करो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सैभं गुरु प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच हैपी सच नानक हुसी पी सच सतगुरु होए दयाल ता श्रद्धा पूरी सतगुरु होए दयाल न कबहू झूरिया सतगुर होए दयाल त दुख ना जानिया सतगुर होए दयाल त हर रंग माणिया सतगुर होए दयाल ता जम का डर कहा सतगुर होए दयाल ता सद ही सुख देहा सतगुर होए दयाल ता नव निध पाई सतगुर होए दयाल ता सच समाई सोए सनंदड़ी मेरा तन मन मौला नाम जपंदड़ी लाली पंद जलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा गुरदर्शन देख निहाली ना हो जती सती नहीं पड़िया मूर्ख मुग्धा जन्म भया प्रणवत नानक तिन की सरना जिन तू नाही विसरिया अमा दृष्ट सब करे हरे अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वस करे सबे बल सदा सुख मन वसा दुख संसार खोवा गुर नव निध दरियाओ जन्म हम काल खो धोवा सुखो टल गुर सेविया अहनस सहज सबाय दर्शन परसै गुरु का जन्म मरण दुख जाय सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी जैत श्री महला पंजवा शंत घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक दर्शन प्यासी दिन सरात चितवा अन दिन नीत खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग मीत दर्शन प्यासी दिन सरात चितवा अन दिन नीत खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग मीत शंत सुन यार हमारे सज्जन एक करूं बेनंतिया तिस मोहन लाल प्यारे
हौ फिरों को जंतिया तिस दस प्यारे सिर धरी उतारे एक पूरी दर्शन दीजै नैन हमारे प्रिया रंग रंगारे एक तिल भी ना धीरी जै प्रभ स्यों मन लीना ज्यों जल मीना चात्रक जिवै तिसंतिया जन नानक गुरु पूरा पाया सगली तिखा बुझंतिया यार वे प्रे हबे सखिया मू कही ना जेहिया यार वे हिक डू हिक चाड़ हौ किस चेते हिया हिक डू हिक चाड़े अनक प्यारे नित कर दे भोग बिलासा तिना देख मन चाउ उठंदा हौ कद पाई गुणतासा जिने मैडा लाल रिझाया हौ तिसिया गय मन डेहिया नानक कहा सुन बिनो सुहागुण मूं दस डिखा फिर के हिया जिनी मैंडा लाल रिझाया हौ तिसिया गय मन डेहिया नानक कहा सुन बिनो सुहागुण मूं दस डिखा फिर के हिया।

शासन कर दिया। बोलो जी वाहेगुरु वाहेगुरु। एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वास भगवती पाशे दशमी प्रथम भगवती समर कहे गुरु नानक लैत्याय फिर अंकित गुरते अमरदास रामदास से फिर सहाय अर्जुन हर गोविंद सिमरो श्री हर आए श्री हर कृष्ण त्याई दुख जाए तेग बहादुर सिमर आका नवन दावे सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई हुए सहाय दसा पातशाह के पुत्रात्मक स्वरूप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब के पातशाह के खालसा साहब। बोलो जी वाहेगुरु। गरीब नवाज आप जी के पंज प्यारे चार साहबजादे चार ही मुक्ते हड्डियां जपियां तपियां जिन्हें नाम जपया वन छकिया देख चलाई के वाही देख डेढ़ किया देना प्यारे सत्यारा नहीं कमाई दे अंदर के। बोलो जी वाहेगुरु। जिन्ना सिंगा सिंगणिया धर्म ए सी दिते बंद बंद कटवाई खोपरियां लुहाइया चरखड़िया के चढ़े आ रहे ना चलाए गए गुरुद्वारे सेवा वास्ते कुर्बानियां कीतियां धर्म ने आ रहा किसी तरीके सत्संग निभाया तिना नहीं कमाई दे अंदर के। बोलो जी वाहेगुरु। पंजा गुरुद्वारे अंदर के। बोलो जी वाहेगुरु। प्रित मैं सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे नाम चेता वै चित आमण का सदका सर्व सुख हो वै जहां जहां गुरु खालसा साहब हर चरियात देख देख की फतेह ब्रत की पै पंथ की जी श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बुलबाले। बोलो जी वाहेगुरु। सिखा नु सिखी दान केस दान रैत दान विवेक दान मसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब के दर्शन स्नान क्योंकि चंडे बुंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार। बोलो जी वाहेगुरु। सिखा दा मन नीवा मत जी मत पद के राखे आप वाहेगुरु। गुरु की विवाह पंथ सदा शाही दार जी गुरुद्वारा निकाला साहब पंजा साहब होर गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्हों आप के पंथ रूप छोड़िया गया है उन्होंने खुले दर्शन दीदार से सेवा संभाल दान अपने खालसा जी बख्शो ये रोटियां की ओट गुरु न्यासरिया के आसरे गुरु धन धन गुरु ग्रंथ उतार दियो दोहे कर जोड़ करो अरदास भावे ताने रास। ये गरीब नवाज जी आपके चरण कामना अरदास दी दतार जी आपने बख्शिश की है अमृत वेले प्रकाश पान हुए संगतों दर्शन राज्य के निहाल दता दियो बेहद बाणियों के पाठ हुए ऐसे रागी सिंह ने अपने जाना जा सकी वार कितने कितने विद्वान भीर ने अज हुक्मनामे की कथा तैयार की कृपा करो वो यहां भुला चुका जी माफी बख्शो पढ़ी हुई बाणी स्रोत के सच कर प्रवान करो बाणी का भाव सारिया संगत हिरदय दिवसा की कृपा करो जी अगो तो शुद्ध मित्र बाणी तैयार पर बुद्धि बख्शिश करो गरीब नवाज इस खुशी में आप दी बख्शियां दातों में मित्र कड़ाप जारी जगह तैयार करके हाज दतार आप जी भोग लाओ शीत प्रसाद सात संकत की रचना लायक होवे जो जी सके स्वास स्वास आप जी का पितर नाम जब हम बख्शिश करो दतार दुखां कलेशां रोगों का नाश करो सुखां का प्रकाश करो देश प्रदेश रक्षा बख्शिश करो जी कृपा कर दतार जी हो आप जी बख्शियां दातों जो नगर तुट सवारियां प्रवान कर दी विवाज आपके चरण सेवा कर रहे सारे पैदा सिंघा सिंघणियां तंदुरुस्ती बख्शो चाढ़ी करा बख्शो सदा ही इस तरह अपने चरणा सेवा दी भावना में कृपा अदा करो दार कृपा करो जी अमृत वेले तो लैके दरते आई है साफ संगतों की आदि दर प्रवान करो घड़िया लिख के लाओ संगतों का दरते तिर पर पेटा प्रवान शुभकामना पूर्ण करो जी कृपा करो गुरु जी बिना दार जी बख्शिश करो गिरी खालसा पंथ सिख कौम एकता स्वाग प्यार की बख्शिश करके सत दोई दाल बख्शो चाना ना जुड़ो गुरबाणी का प्यार बख्शो दार हर मैदान दुआन फतेह बख्श कर निर्भरता करो जी कृपा करो दूर दुराडे बैठिया घरों की लाइव तकी सरवण कर रही सारी संगतों की हाजिर प्रवान करता दार आपने कृपा की संगतान उद्धव बख्शे संगत आपके चरणा धनवाद करते हैं शुक्रिया अदा करते हैं बेहद माया हर लाइन गुरु कर गुरु घर सेवा संगत दस संगत माया भेटा कर रही चरणा प्रवान करो बख्श कर सब कमाइया सबर करो कारोबार से वाद बख्शो दार सब संगत शुभकामनावान सबना पूरी करो जी मेरा न करो सेवा प्रवान करो भुला चुका माफी बख्शो बेहतर हुक्मनामे बख्शे कर प्रांत लड़ी वास्ते अच पाठ करने वास्ते आग्ञा बख्शो रेंदे कार सवार की चरना धनवाद बनाओ शुद्ध से पित्र सिया लिया की बात करता सही प्यारे मेनो जिले बराब का नाम जता नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाए। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दोहरा आग्ञा भई अकाल की तभी चलायो पंथ सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की देह
जो प्रभु को मिल भूत है कोई शब्द में राज करेगा खालसा आगी रहे ना कोई ख्वार हुए सा मिलेंगे बदे शरण जो वाहे गुरु नाम जहाज है चढ़े तो उतरे पा जो शरण

भगत खजाना गुरमुख जाता, सतगुर गूज बुझाई, संत हो गुरमुख दे वडियाई, रहाओ सच रहो सदा सहज सुख उपजै, काम क्रोध विचों जाई, आप छोड़ नाम लिव लागी, ममता शब्द जलाई, जिस ते उपजै तिस ते बिनसै, अंते नाम सखाई, सदा हजूर दूर नह देखो, रचना जिन रचाई, सच्चा शब्द रवै घट अंतर, सच्चे स्यों लिवलाई, सत संगत मह नाम निर्मोलक, वड्डे भाग पाया जाई, भरम न भूलहो सतगुर सेवहो, मन रखहो इकठाई।

राम मुरारी अन दिन जागत रहे दिन राती अपने प्रै प्रीत प्यारी तन मन वारी वार कुमाई अपने गुर विटहु बलिहारी माया मोह बिनस जाएगा उबरे शब्द विचारी आप जगाए से जागे गुर कै शब्द विचारी।

ताज वन खंड खा पाया, किन्ही गृह ताज वन खंड पाया, किन्ही मोन अवधूत सदाया, कोई कहतो अनन भगौती, मोहे दीन हर हर ओट लीती, किन्ही कहया हौ तीर्थवासी, कोई अन ताज भया उदासी, किन्ही भवन सब धरती करया, मोहे दीन हर हर दर परया, किन्ही कहया मैं कुलह वड्याई, किन्ही कहया बाहा बहु भाई, कोई कह मैं मने पसारा, कोई कह मैं तने पसारा, मोहे दीन हर हर आधारा, किन्ही घूगर निर्त कराई, किन्हू वर्त नेम माला पाई, किन्ही तिलक गोपी चंदन लाया, मोहे दीन हर हर हर ध्याया, किन्ही सिद्ध बहु चेटक लाई,

काबू बिहावै पर दर्ब चुराए, हर जन बिहावै नाम त्याए। काहू बिहावै जोग तप पूजा, काहू रोग सोग परमीजा, काहू पवन धार जात बिहाए।

हर जस करते काहू बिहावे मता मसूरत काहू बिहावे सेवा जरूरत काहू बिहावे सोदत जीवत संत बिहावे हर रस पीवत जित को लाया तित ही लगाना ना को मूड़ नहीं को स्याना।

राखे हर राय, ऐसी रखनहार दयाल, जत कत देखो तुम प्रतपाल। रहाओ जल पीवत ज्यों तिखा मिटंत, धन बिगसै ग्रह आवत कंत।

ज्यों बाला प्रीतम दे प्रीतम मिल जाए त्यों हर जन राखे कंठ लाए ज्यों अंधले पेखत।

तिन धारण हार, बंधन ते होई छुटकार, सब थान देखे नैन अलोए, तिस बिन दूजा अवर न कोए, भ्रम भय छूटे गुर प्रसाद, नानक पेख्यो सब बिस्माद, राम कली महला पंजवा, जी जंत सब पेखी है, प्रभ सगल तुम्हारी धारणा, इहो मन हर कै नाम उदाहरणा रहा, खिन मैं थाप उथाप दे, कुदरत सब करते के कारणा, काम क्रोध लोभ झूठ निंदा, साधु संग विदारणा, नाम जपत मन निर्मल हुवै, सूखे सूख गुदारणा, भगत शरण जो आवै प्राणी, तिस ईहां ऊहां ना हारना, सूख

पालना अनिक वार कूट जन उपर नानक वंजै वारना राम कली महला पंजवा अष्टपदी इको अंकार सतगुर प्रसाद दर्शन भेटत पाप सब न सह हर स्यों दे मिलाई मेरा गुर परमेश्वर सुखदाई पार ब्रह्म का नाम दृढ़ाई अंते हुए सखाई रहाओ सगल दुख का डेरा पन्ना संत तूर मुखलाई पतत पुनीत किए किन पितर अज्ञान अंधेर बंजाई करण कारण समरथ स्वामी नानक ते शरणाई बंधन तोड़ चरण कमल दृढ़ाई एक शब्द लिवलाई अंधकूप बिखिया ते काढ़ियो साच शब्द बन आई जन्म मरण का सहसा चुका बाहुड़ कतहु न ताई नाम रसायन इहु मन राता अमृत पी तृपताई संत संग मिल कीर्तन गाया निचल वसिया जाई पूरे गुर पूरी मत दीनी हर बिन आन न पाई नाम निदान पाया वडभागी नानक नरक न जाई काल सियानप उकत न मेरी पूरे गुरु कमाई जब तब संयम सुच है सोई आपे करे कराई पुत्र कलत्र महा बिख्या मह गुर साचै लाए तराई अपने जीते आप संभाले आप लिए लड़ लाई साच धर्म का बेड़ा बांधिया भवजल पार पवाई बेसमार बेअंत स्वामी नानक बल बल जाई अकाल मूरत अजूनी संभव कल अंधकार दीपाई अंतर जामी जीयन का दाता देखत तृप्त अघाई।

माई संतो हो राम कली महला पंजवा मन बच क्रम राम नाम चितारी घूमन घेर महा अत बिखड़ी गुरमुख नानक पार उतारी रहाओ अंतर सूखा बाहर सूखा हर जप मलन भय दुष्टारी जिस ते लागे तिने निवारे प्रभ जीव अपनी कृपा तारी उदरे संत परे हर सरनी पच बिनसे महा अहंकारी साधु संगत एहो फल पाया एक केवल नाम अधारी ना कोई सूर ना कोई हीना सब प्रगति ज्योत तुम्हारी तुम सम्राथ अकथ अगोचर रव्या एक मुरारी कीमत कौन करे तेरी करते प्रभ अंत न पारावारी नाम दान नानक वडियाई तेरिया संत जनारे नारी राम कली महला तीजा आनंद एको अंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माई सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइयां।

आनंद सब को कहे आनंद गुरु ते जानिया जानिया आनंद सदा गुरु ते कृपा करे प्यारिया कर कृपा किल विख कटे ज्ञान अंजन सारिया अंदरो जिनका मोह टुटा तिनका शब्द सच्चे सुवारिया कह नानक हो आनंद है आनंद गुरु ते जानिया बाबा जिस तू देह सोई जन पावै पावै ता सो जन देह जिसनु होर क्या करे विचारिया एक परम भूले फिरह दादी सिक नाम लाग सुवारिया गुर प्रसादी मन भया निर्मल जिना भाणा पावे कह नानक जिस देह प्यारे सोई जन पावे आव संत प्यारे हो अकथ की करह कहानी करह कहानी अकथ केरी कित दुआरे पाईए तन मन धन सब सौंप गुर को हुक्म मन्निए पाईए हुक्म मन्नेहु गुरु केरा गावहु सच्ची बाणी कह नानक सुनहु संतहु कथियो कथ कहानी हे मन चंचला चतुराई किने न पाया चतुराई न पाया किने तू सुन मन मेरिया एह माया मोहनी जिने तु भरम भुलाया माया ता मोहनी तिने कीती जिंठ गौली पाईया कुरबान कीता तिसै विटो जिन मोह मीठा लाया कह नानक मन चंचल चतुराई किने

शब्द रतन जित मन लागा इहु हुआ समाओ शब्द सेती मन मिलिया सच्चै लाया भाउ आपे हीरा रतन आपे जिसनु दे बुझाई कह नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ शिव सकत आप उपाय कह करता आपे हुक्म वरताए हुक्म वरताया वेखै गुरमुख सह बुझाए तोड़े बंधन हुवे मुक्त शब्द मन वसाए गुरमुख जिसनु आप करे सो हुवे एक स्यों लिवलाए कह नानक आप करता आपे हुक्म बुझाए सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे तत्तै सार ना

जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन न वसाया। गुर प्रसादी हर मन वसिया पूर्व लिखिया पाया। कह नानक ओ शरीर प्रवान हुआ जिन सतगुरु स्यों चित लाया। हे नेत्र हो मेरे हो हर तुम मैं जोत धरी। हर बिन अवर न देखो कोई हर बिन अवर न देखो कोई नदरी हर निहालिया। एहो वे संसार तुम देख दे एहो हर का रूप है हर रूप नदरी आया। गुर प्रसादी बुझिया जा वेखा हर इक है हर बिन अवर न कोई। कह नानक ए नित्रंद से सतगुर मिले दिव दृष्ट होई।

जित सुनी मंथन हरिया हुआ रसना रस सुमानी सच लख विडानी ताकि गत कही न जाए कह नानक अमृत नाम सुनहु पवित्र हो सच है सुन नैनु पठाए हार जियो गुफांदर रख कै वाजा पवन वजाया वजाया वाजा पौन नौ द्वारे प्रगट किए दसवां गुप्त रखाया गुरुद्वारे लाए भावनी इक ना दसवां द्वार दिखाया तह अनेक रूप नाउ नव निध तिस्तांत न जाई पाया कह नानक हर प्यारे जियो गुफांदर रख कै वाजा पवन बजाया एहो साचा सोहिला सच है कर गावो गावो ता सोहिला कर सच है जिथे सदा सच त्यावहे सचो त्यावहे जो अतुद भावहे गुरमुख जिना बुझावहे एहो सा सबना का खसम है जिस बख्शे सो जन पावहे कह नानक सच सोहिला सच है कर गावहे आनंद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग।

मेरे मामा जी भाई अवतार सिंह जी होनी और पहला भी संगत लाहौर भी शब्द हुक्म पर बंदिश पुरानी है आप जो सुनी हुई पर ए जो मुला संबोधन है बस उ इस शब्द की कंपोजिशन की कमाल है मुला कहो न्या खुदाई सो जिस तरह कल बंद सिखाई सी इसने हुक्म हो गया कि यह भी सुनाओ सो आओ बड़े प्यार

खोज शब्द में राज करेगा खालसा, या की रह न ख्वार हुए सब मिलेंगे, बचे शरण जो

अलत पलत पार ब्रह्म सुवारे, कार्य होए सगले पूरे रहाऊ, हर हर नाम जपत।